एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज बुधवार है। शक सवत 1948 के आषाढ़ मास की 70वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 8 जुलाई वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजे है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन

0: राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यानी चैनल है। श्रोताओं, सकारात्मक विचार जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देते हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

0: जब से ये धरती है तब से ही फूल इस धरा को महका रहे हैं। मनुष्य के अस्तित्व से भी पहले इस धरती पर पानी और वनस्पति ने ही अपने सौंदर्य को बिखेरा होगा। दूर दूर तक फैली हुई घाटियां हरियाली की चादर ओढ़े अपने सतरंगी रूप में जब हमारे सामने होती है तब हमें यकीन ही नहीं होता कि ईश्वर कितना मेहरबान है। और प्रकृति की इस छटा में चार चांद लगाते हैं वो पुष्प जो अपनी रंगीनियत से धरती की हरियाली को श्रृंगारित करते हैं। फूल और उनके पराग, उनका रस तितलियों और भंवरों के लिए ही होता है। कितने ही कीट पतंगों का जीवन फूलों पर निर्भर है, एक फूल पर तितली का मंडराना हमें एक अलग ही आनंद देता है। एक फूल का अपने पेड़ पर खिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी माँ की गोद में उसका शिशु खिलखिला रहा हो। एक फूल का खिलना हमें उम्मीद से भर देता है। जब फूल खिलखिलाते हैं तब जीवन के सभी दुख हम भूल जाते हैं। फूलों का खिलना हमें सकारात्मकता से भर देता है और फिर ओस की बूंदों को अपने आप में समेटे जब गुलाब अपनी पूरी रंगीनियत के साथ मुस्कुराता है तब हमें उसकी तपस्या को भी समझना चाहिए। फूल अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, अपनी खूबसूरती और सुगंध वो हमेशा दूसरों पर न्यौछावर करता है। इसमें एक बड़ा संदेश हम सबके लिए भी है कि हमारी अच्छाइयां मनुष्यता के लिए हों। हमारे आंगन के बगीचे और गमलों में मुस्कुराते फूलों को देखिए, वो हमसे यही कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराइए। आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए औषधि का काम करती है। निस्वार्थ रहिए और अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाते रहिए एक फूल की तरह।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यानी चैनल है। लीजिए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अन्य चैनल है। लीजिए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्राभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

श्री रामचरितमानस गान का ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम वातायन।

प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10 बजे और पुनः दोपहर 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। वहीं 8:15 पर आप सुनेंगे दिल का जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कार्यक्रम सुगम संगीत को आप सुन सकेंगे प्रातः 9:10 पर और पुनः

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग को आप सुन सकेंगे प्रातः 9:30 पर। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारे सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम जिले की चिट्ठी को आप सुनेंगे शाम 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। वहीं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर।

कार्यक्रम बैरानी वात आप सुनेंगे शाम 7 बजे 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

समाचार संध्या को आप सुन सकेंगे रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। वहीं रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे हिंदी में समाचार।

आप सुन रहे थे दिन भर के कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम खेती नी वाद का।

बात कार्यक्रम हमारा आ रहा सब किसान भाइयों ने मान जी भाइयों राम राम। किसान भाई आज आप बात करेगा फसल चक्र ने यानी क्रॉप रोटेशन में महत्व ने बारे में। तो किसान भाइयों एकस खेतर में लगातार एकस फसल उगाड़वाते कि आपड़ी जे खेती खेती है एण में नुकसान था केम के आने थे कि आपड़े खेतर ने जे मिट्टी है एण में जे कुछ पोषक तत्व है आण में कमी आंबा लागे है कीट ने रोग जे है ये बढ़ी जाए और उत्पादन धीरे धीरे घटवा लगे। आनी स्थिति थी कि बचवा बल्ले फसल चक्र ने अपना वो बहुत आवश्यक है। अगर बात कर फसल चक्र है हो तो एकस खेतर में अलग अलग मौसम में या वर्षों में जो नियोजित क्रम है एने थी कि हटी ने जो फसलें उगाड़वानी प्रणाली है एने सापुण फसल चक्र कर यानी अगर सरल भाषा में हमज तो एकस खेतर में लगातार लगातार एक हर को मौसम ने वर्षों तक अलग अलग फसलें ने करी ने एकस क्रम थे कि इन इस फसलें उगाड़ी कर तो आज फसल उगाड़वानो आपड़ो जे तरीको है या जे प्रणाली है आ फसल चक्र ने कहवागा। आने जगह आपने बदली बदली ने फसलन उगाड़ो पड़े बुवाई करवी पड़े। तो किसान भाइयों फसल चक्र में चक्र थे कि आपने अंदाजा

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कमजी भाई और साथियों द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

0: आप सुन रहे थे कमजी भाई और साथियों की आवाज में ये गीत कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में। इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आपको सुना रहे हैं वार्ता। विषय है नीम का वृक्ष। वार्ताकार है मोहन जोशी।
1: वार्ता का विषय है नीम का वृक्ष। वरिष्ठ नागरिक, गांव की चौपाल का यह नीम बूढ़ा पिता की याद से भी पहले खड़ा है। सघन छाया में भी बिछी है खाट कितनी, इसकी जड़ों पर बैठकर ही मैंने पढ़ा है। कवि नीम का पेड़ कविता को प्रतीक रूप में वृद्ध जनों के अनुभव, संस्मरण, आत्मीयता तथा संवेदनाओं की याद दिलाता है। वरिष्ठ जन वह पेड़ हैं जो भले ही फल नहीं देते पर उनकी घनी छाया प्रेम और जीवन के अनुभव प्रदान करती है। वे समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। समाज के लिए वृद्धों के अनुभव पथ प्रदर्शक, संस्कारों और सभ्यता के वाहक व संस्कृति के रक्षक होते हैं। समाज में विविध विधाओं, कार्यों एवं स्थलों पर सेवा एवं अनुभवों का संरक्षित कर

नव समाज को अर्पित करते हैं। वे कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर नव युवाओं का सहयोग करते हैं। वे अद्भुत संरक्षक हैं जो बौद्धिक व मानसिक बल से अपने पूर्वजों व अनुभवियों से प्राप्त अनुभव का ज्ञान संग्रहण कर पूंजी या धरोहर के रूप में अपनी नव पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। जीवन का अनुभव हो जिसके पास, हर मंजिल पूर्ण करती है उनकी आस। आज कनिष्ठ जन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। युवा समाज की लहर में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ के मध्य खाई का अनुभव किया जा रहा है। इससे कर्तव्यनिष्ठा, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपराओं का संवहन रुक सा जाया। विकास और सभ्यता के नाम पर युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर रुक कर रहे हैं। उनमें वरिष्ठ जनों की शारीरिक अक्षमता, आर्थिक दृष्टि से कमजोरी तथा संयुक्त परिवार प्रथा के प्रति उनके उदासीनता से व्यक्तिवाद भारी पड़ रहा है। व्यावसायिक दृष्टि से व्यक्ति परिवार से दूर हो गया है। इससे परिवार व समाज का महत्व कम हो गया है। भावात्मक समस्या के कारण प्रेम, सहयोग एवं सम्मान की भावना आज कम हो गई है। वरिष्ठ जन एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त युवा बेरोजगारी के कारण अपने वरिष्ठ जनों पर ही भार बनकर रह गए हैं। समाज के विचलन के कारण वरिष्ठ जन असहाय होते जा रहे हैं। पारिवारिक सौहार्दता, मधुर भाषिता, सकारात्मकता एवं सहयोग से वंचित होते जा रहे हैं। यह भारत की नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या बन गई है। इसी कारण कई समाजसेवी संस्थाओं एवं सरकारी प्रयासों से वृद्धाश्रम, वृद्ध क्लब, सामाजिक संस्थाओं, सरकार द्वारा सम्मान, सरकारी सुविधाएं, भौतिक एवं आर्थिक सहयोग के कारण मार्गदर्शक के रूप में वृद्धों की अहम भूमिका सिद्ध होती जा रही है। वरिष्ठ जनों की महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समझा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर वृद्धों के लिए एवं वृद्धों के द्वारा विशेष कार्यक्रम, चर्चाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मान किया जाता है। भारत में वृद्धों के हित के कार्य और सम्मान बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्थान, मंडल स्तर पर महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान उदयपुर तथा वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान बांसवाड़ा स्थापित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया गया है, जिसके अनुसार असहाय, निर्धन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनन संतान एवं उत्तराधिकारियों से मासिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार द्वारा भी वृद्ध कल्याण सुविधाओं के लिए नियम और योजनाएं बनाई है। अब इसमें प्रमुख योजना है, पहली पेंशन योजना, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना है, जिसमें बीपीएल परिवार के 60 वर्ष से ऊपर के सदस्य को 500 रुपया मासिक पेंशन दी जाती है। इसके लिए राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र व 3 पासपोर्ट साइज फोटो संबंधित विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य स्तर पर राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें राजस्थान मूल के 55 वर्षीय या उससे अधिक महिला एवं 58 वर्षीय पुरुष जिसके परिवार में कोई राजकीय सेवा का सदस्य न हो 500 रुपया तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 750 रुपया प्रति माह पेंशन दी जा सकती है। वृद्धजनों की विधिक सेवा सहायता समितियों द्वारा निशुल्क कानून सहायता एवं गरीब वृद्धजनों को न्यायालयों में निशुल्क पैरवी की जाती। बसों, रेलों, हवाई जहाजों में बैठने में प्राथमिकता तथा किराए में भी रियायत यात्रा की सुविधा दी गई है। वृद्धों की सुविधा के अनुसार उन्हें साक्षर होने की आवश्यकता पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र व डे केयर सेंटर पर निशुल्क सेवा प्राप्त होती है। निसहाय, निराश्रित, निसंतान जन एवं संतान द्वारा पीड़ित वृद्ध जनों को

0: वृद्धाश्रम में आवास एवं भोजन की सुविधा होती है। वृद्धाश्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाती है। वृद्धाश्रम के लिए निःशुल्क 1000 वर्ग फीट भूमि सरकार द्वारा आवंटित की जाती है तथा उस पर निर्माण कार्य के लिए 30 लाख रुपयों के अनुदान का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों को 2,50,000 रुपया तक वार्षिक तथा 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5,00,000 रुपया वार्षिक आय पर आयकर में छूट दी जाती है। अस्पतालों, बैंकों, डाकघरों, बसों एवं रेल काउंटरों पर लंबी कतार होने पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के हित और सुविधाओं के लिए बांसवाड़ा नगर में 22 जनवरी 2012 को वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान बांसवाड़ा की स्थापना की गई है। यह राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्थान से संबद्ध है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बांसवाड़ा की पहल पर श्रीमान आयुक्त महोदय नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा पुराना नगर परिषद भवन रातितलई बांसवाड़ा में एक कक्ष आवंटित किया जा चुका है। अब संस्थान सदस्यों के द्वारा बैठक की व्यवस्था, टीवी, समाचार पत्रों एवं धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तकों की व्यवस्था धीरे धीरे की जा रही है ताकि निराश्रित एवं अन्य वृद्धजनों के अपना समय धूप प्यास सहनकर बाहर गुजारने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार अपना समय संस्थान कक्ष में गुजार सकते हैं। शीघ्र ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सकों एवं कंपाउंडरों की निःशुल्क सेवाओं का भी एक दिन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। नव युवकों से निवेदन है कि वरिष्ठ नागरिक नव पीढ़ी के नीम के पेड़ की तरह जरूर हैं। वे हमें कड़वे अवश्य लगते हैं, परंतु उनकी सघन छाया में अनुभव, संस्मरण, आत्मीयता, संवेदनाओं, कर्तव्यनिष्ठा, सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपराओं की निधि छिपी पड़ी है। इसका आप अधिकतम उपयोग कर उन्हें अपना मार्गदर्शक मानकर अब एक नवीन राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं ताकि आप और वृद्ध जन के मध्य एक पारस्परिक प्रेम, सहयोग और अपनत्व की भावना पैदा हो सके।
1: कार्यक्रम वातायन यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। दीवार फिल्म का गाना सुनिए, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है आरडी।

किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए खेल खेल में इस फिल्म का गाना। गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरडी बर्मन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: दोस्तों आज अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन है, तो हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई खय्याम ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाए जाएंगे एक ब्रेक के बाद।

अंतराल के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत के बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अब आपको सुनवाते हैं अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म का गाना किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047

0: विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप अंदाज गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी

0: अधिकारियों ने भाग लिया।
1: डॉक्टर पी के मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान

0: श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जल डमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तरकश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं।

0: पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार। कार्यक्रम कुछ दिलचस्प को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। उम्मीद है श्रोताओं आप सब मजे में होंगे और चाय की चुस्कियों के साथ इस हसीन सुबह का लुत्फ उठा रहे होंगे। श्रोताओं वादा, ये शब्द भी कितना कमाल है ना। दो अक्षरों का एक छोटा सा लफ्ज, लेकिन इसके पीछे छिपी उम्मीदें और जज्बात कितने बड़े होते हैं। इसलिए आज हमारे कार्यक्रम कुछ दिल से में हम बात करने वाले हैं इसी खूबसूरत एहसास की, यानी वादों की। वे वादे जो हम दूसरों से करते हैं, वे वादे जो कोई हमसे करता है, और सबसे जरूरी वे वादे जो हम खुद से करते हैं।

श्रोताओं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी कोई वादा ना किया हो या जिससे किसी ने कोई वादा ना निभाया हो। बचपन में वो पिंकी प्रॉमिस याद है आपको, जब छोटी उंगली से उंगली मिलाकर हम कहते थे पक्का प्रॉमिस, अब किसी को नहीं बताएंगे। उस वक्त वो छोटी उंगली दुनिया का सबसे बड़ा भरोसा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वादों के मायने बदलने लगते हैं। कुछ वादे निभाए जाते हैं तो कुछ हालात की आंधियों में टूट जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वादे भी अजीब हैं, टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है और निभ जाए तो जिंदगी सवर जाती है।

बड़ी आसानी से कह दिए जाते हैं, जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा। अब भाई चांद तारे तो कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ उस वादे के पीछे की जो शिद्दत होती है वो सामने वाले का दिल जरूर जीत लेती है। श्रोताओं, दुनिया से किए गए वादे, उनको टूटने पर शायद तो सिर्फ एक रिश्ता टूटता है, लेकिन जब हम खुद से किया वादा तोड़ते हैं तो हमारा खुद पर से विश्वास टूटने लगता है। इसलिए दूसरों से पहले खुद से वफादारी बहुत जरूरी है।

सोचिए, एक वादा ही तो है जो दो अनजान लोगों को शादी के पवित्र बंधन में सात फेरों के साथ जीवन भर के लिए बांध देता है। वो सात वादे जो एक दूसरे का साथ निभाने के लिए किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो

की होती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई इंसान हमसे दूर चला जाता है, लेकिन उसका किया हुआ एक वादा हमें सालों साल जीने का हौसला दे जाता है। मैं लौट कर आऊंगा, यह सिर्फ चार शब्द नहीं है, यह एक फौजी की पत्नी के लिए, एक बूढ़े माँ बाप के लिए उम्मीद की वो किरण है जिसके सहारे वे पूरी जिंदगी काट देते हैं।

अगर आप साथ नहीं निभा सकते तो उम्र भर के दावे मत कीजिए। एक कड़वा सच कहना बेहतर है बजाय एक झूठे वादे के सहारे किसी की उम्मीदों को जिंदा रखने के। शायद इसलिए बशीर बदर साहब ने कहा था, ये समझकर उसने मेरे सारे वादे तोड़ दिए कि बदलते हुए मौसम में तो दीवारें भी गिर जाती हैं।

श्रोताओं, आज खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने चेहरे की मुस्कान को कभी खोने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी ये मुस्कान किसी और की दुनिया को रोशन कर सकती है। इसी के साथ ही दीजिए मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुना रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज में।

0: आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में ये गीत कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9 बजे हैं। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। इंडोनेशिया में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बन रही मुकुंदरा टनल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर समझौता हुआ और मॉनसून के अगले 2 दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। उनका प्रवासी भारतीयों की एक विशाल सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने जकार्ता में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में भाग लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर स्टार्टअप क्रांति और सामाजिक विकास कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
2: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ करते।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। एक्सप्रेस वे पर कई जगह सड़क टूटने और निर्माण में खामियों की खबरों के मद्देनजर वे सड़क निर्माण की गुणवत्ता को परखेंगे। श्री गडकरी दोपहर में दौसा और उसके बाद बूंदी जिले में स्थित लबान इंटरचेंज पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ इस निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री कोटा के पास मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक बन रही दरा टनल का जायजा लेंगे और निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। एनएचएआई के राजस्थान जनरल मैनेजर संजय

प्रधान ने बताया कि निर्माण कार्य में कमी पाए जाने से संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाटूश्याम मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रस्तावित रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंदिर ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि नए रेलवे स्टेशन के निर्माण से खाटूश्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये स्टेशन सीकर रिंगस रेलखंड पर पलसाना और बावड़ी ठिकरिया स्टेशनों के बीच बनाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए रेल संपर्क और यात्री सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। जयपुर के कमला नेहरू नगर में कल हुई सड़क दुर्घटना की जांच के लिए जिला प्रशासन ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने समिति को 5 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समिति में पुलिस, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जयपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों, राहत और बचाव कार्यों तथा विभिन्न विभागों की कार्रवाई की समीक्षा करेगी। गौरतलब है कि इस हादसे में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: नर्मदा नदी के जल के बेहतर उपयोग को लेकर लंबित नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सहमति बन गई है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस समझौते से सहकारी संघवाद की भावना और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े इस निर्णय से जालौर और बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को फायदा मिलेगा। प्रदेश की जल सुरक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों की बुवाई, मॉनसून की स्थिति और अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अगले दिनों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में वर्षा की संभावना के चलते बुवाई में तेजी आने की उम्मीद है। इस दौरान कम वर्षा वाले जिलों के लिए आपातकालीन कार्य योजना बनाने सहित उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। साथ ही जलाशयों में जल भंडारण पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री श्री चौहान ने कल ही प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य कृषि उद्यमियों और किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: राज्य सरकार ने उद्यानिकी फसलों के सुरक्षित भंडारण और बेहतर विपणन को बढ़ावा देने के लिए सोलर क्रॉप ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। योजना के तहत 70 और 100 किलोग्राम क्षमता वाले ड्रायर पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से धनिया, मेथी, टमाटर, मिर्च और पालक जैसी फसल उगाने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। 12 जिले में रबी सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर धनिया की खेती होती है। एक किसान अधिकतम 5 इकाइयों की खरीद पर 7 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकेगा। इससे फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने और

किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने में सहायता होगी। और अब मौसम। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर, जोधपुर और राजगढ़ से होकर गुजर रही है। वहीं आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर को छोड़कर समूचे राज्य में बरसात का येलो अलर्ट है। वहीं विभाग ने 12 झालावाड़ और कोटा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच कल करीब 20 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। डूंगरपुर में कल रात अच्छी बारिश हुई। भरतपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। सवाईमाधोपुर और नागौर

0: बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। सवाईमाधोपुर और नागौर में रात भर बरसात की झड़ी लगी रही। डीग में सुबह से ही बारिश का सिलसिला बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। इंडोनेशिया में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रही मुकुंदरा टनल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर समझौता हुआ। और मॉनसून के अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं गजल गायक चंदन दास द्वारा गाई कुछ गजलें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।

चंदन दास द्वारा गायी गजलें सुन रहे थे आप कार्यक्रम सुगम संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 9:30 हुए। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
0: श्रोताओ इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
0: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
0: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
0: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन

0: हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
1: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते
2: मित्रों संग आनंद मनाते
0: कभी दौड़ना और उछलना कभी गेंद के खेल खेलना
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें गिल्ली डंडा सबको भाता सतोलिया भी मजा दिलाता
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना
0: या हंस हंस के बातें करना
2: जब अंधेरा होने लगता
0: सबको कुछ डर लगने लगता तब हम घर को वापस आते कल खेलेंगे यह कह जाते अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशुपालन। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वूमेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वो निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली,

0: छुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ ये तो है, आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है, ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है, यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और दो

0: बर्तन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहेम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्स-रे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहाँ आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
5: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीर जी।
3: गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा,
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद ले।
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?

0: कीमत नहीं लूंगा। हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है। धन्यवाद।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
2: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
3: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
7: सेल्युलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने, और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
8: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हां, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहां बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
8: विपुल जी, कहां से शुरू करें? शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहां के रहने वाले हैं, पैदाइश कहां की है और बचपन कहां बीता आपका?
9: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
8: अच्छा।
9: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
8: अच्छा।
9: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
8: जी।
9: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं, और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
8: जी। जी।
9: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए, और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
8: अच्छा।
9: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
8: जी।
9: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
8: अच्छा।
9: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस। तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में, या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं, या एफटीआई में जाऊं
8: जी,
9: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो, ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया, तो बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, अभी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
8: अच्छा।
9: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
8: जी।
9: वहां पे कुछ महानाट्य थे,

0: कुछ नॉर्मल नाटक थे वो मैंने किए, लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
0: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
0: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कम्प्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई कम्प्लीट माई MBA।
1: अच्छा।
0: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से तो ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
0: सो दो ढाई साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन,
1: तो पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
0: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
0: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी जी।
0: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, दो साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया, और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि फोर इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहां शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है। लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी,
0: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहां पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहां पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है। एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है। तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
1: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं
0: जी,
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
0: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूँ ये मेरी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: आई नेवर इमेजिन एनी अदर प्रोफेशन, बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था, जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भाई लोग जब बोल रहे हैं समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया
1: जी,
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड, उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है
0: बहुत ज्यादा।
1: ये कितने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया
1: जी, जी।
0: मैं पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो।
1: अच्छा।
0: तो मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ न कुछ यहाँ पे लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद 6 महीने और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जब आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा,
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद्व होता था
1: जी, जी।
0: कि यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही लेकिन करना पड़ रहा है। तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे, तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूँ उस नजरिए से अगर बात करें तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया,
0: ये एक बहुत खूबसूरत सा गाना है,
1: आइए सुनते हैं। जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था दो साल के लिए, मैं जॉब छोड़ के मैं नागपुर में दो साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, एक तारीख को सैलरी आती है, वो तोड़नी थी मुझे आदत, क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहां पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे से, तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, रिटायरमेंट के बाद में शी वाज टेकिंग केयर ऑफ दिस।

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए।
1: हाँ।
0: ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था
1: जी।
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी,
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए।
1: हाँ। हाँ।
0: तो वो भी वाकया जो है
1: जी,
0: पहली फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि बोलने वाला जा रहा था कि बच्चा साहब के जवानी मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर डिपेंड है। तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि तीन तीन महीने मेरे पास काम नहीं था। तो एक एक्टर के लिए जब तीन महीने काम नहीं है तो आप तीन महीने कुछ नहीं कमा रहे हो। वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ न कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं। तो ये चलता रहा काफी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं वेरिएशन न दे पाऊं तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए
0: जी।
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ।
0: अच्छा।
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है
0: जी, अनाज का कोठार
1: होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो 20-20, 25-25 फीट के कोठार होते हैं, जो पहले किले पे भी हुआ करते थे।
0: हाँ।
1: जहां पे लोग आके उसमें धान्य डालते थे, कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया।
0: हाँ।
1: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा
0: जी।
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन दे के एक जगह से कॉल आया और एक बहुत

0: डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
1: जी
0: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा।
1: अच्छा,
0: मुकेश छावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहां काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था।
1: जी, जी।
0: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता।
1: बिल्कुल।
0: तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एंड हैपन इन माई लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते हो।
1: हाँ, बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम,
0: बहुत,
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सबके साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ।
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
1: हाँ,
0: अगर
1: हाँ।
0: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशियंट टाइम दिया है
1: जी,
0: तो सामने, मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
1: जी जी।
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था।
1: हाँ, हाँ।
0: हमारा शो और उनका शो केबीसी, और वो
1: जी, जी।
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात करने का। तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा
1: जी,
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है।
1: अच्छा।
0: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले एक मिनट बात करनी है।
1: हाँ।
0: तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
1: हाँ,
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा
0: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए, तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। लाभ द सेम वे द वे यू लाभ।
1: अच्छा अच्छा,
0: डर वाला मुझसे होता नहीं है।
1: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
0: हाँ। बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टूगेदर्स में।
1: हाँ।
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे।
1: ओहो,
0: आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा।
1: चलिए सुनते हैं हम।

0: तरसे, ये दुख दर्द किया मुझे कोई दिल ना प्यासा, तरसे दे दे प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे दे हमें प्यार दे।
1: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे, और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
2: इस दौरान काफी फिल्में हुई, एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी।
1: हाँ हाँ,
2: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी, अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी हैं
1: जी,
2: तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एक ही वर्ष एक ही मेरी दूसरी फिल्म थी
1: जी।
2: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी
1: जी,
2: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्म कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक, वो एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब सीरीज जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में
1: जी,
2: तो उसके साथ की थी, वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब
1: जी,
2: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने सत्या का कैरेक्टर
1: किया,
2: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब
1: जी,
2: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध, जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
1: अच्छा,
2: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े, वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी होंगी आज इंडिया
1: जी,
2: में
1: जी।
2: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखों की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूं, लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूं, फैमिली मेरी नागपुर में थी, लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था
1: जी।
2: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी, बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू।
1: अच्छा,
2: तब हमारे रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है, मैं गया सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई, बातें हुई, मुझे पता नहीं वो कहां जा रहे हैं, उन्होंने कहा जुहू चलो।
1: अच्छा,
2: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे, तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ, मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर? अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा,
2: अरे मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प, इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया। ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
1: अच्छा,
2: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा,
2: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है, मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा,
2: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ और राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे। और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया कि डीएसपी राणा नाम के उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था
1: जी,
2: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया कि मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है।

0: थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट, और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं, काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है। Then he gave me that character and I worked with him. It was a beautiful experience working with him also.
1: OTT की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है
0: जी।
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और OTT ऑलमोस्ट सेम है।
1: हाँ,
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है
1: जी।
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है
0: जी। तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है और आपके पास में बहुत सारा काम होता है
1: जी जी,
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी
1: जी।
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी,
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात।
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वो अगले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था।
1: अच्छा,
0: तब तक मैं फिल्म और OTT ही करना चाहता था तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था, बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में मुझे।
1: ये मुझे लगता है 2022 की बात है।
0: जी जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ,
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी, उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है।
1: हाँ,
0: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले, तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो
1: जी।
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल,
0: आज ऐसा हो गया कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा है वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, नहीं सर पता करने आया, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था।
1: हाँ,
0: वो सफर है।
1: अच्छा,
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ,
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब
1: बराबर
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: हाँ,
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा, बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उनपे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: है, है। क्या बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है।
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत,
0: बेहद लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे, हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे। अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी,
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमिता ये करते हैं, सुमिता ये करेंगे, हाँ ये करेंगे,
0: हाँ।
1: जैसे एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी जी, जी।
1: क्योंकि मैंने
0: बड़े भाई का रोल,
1: मैंने उनके बड़े भाई का रोल किया था,
0: मनोज नाम,
1: मनोज वागले मेरा नाम था
0: जी जी जी।
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था,
0: हाँ।
1: मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए,
0: हाँ।
1: कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ, सभी हम लोग सभी से सीनियर है। और फिर उसके बाद में जैसे एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहां से आवाज आती थी, अरे दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: फास्टर फेने वो शो किया करते थे 80s में शायद,
0: बिल्कुल।
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रियल मदर फादर थे और उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने,
1: अमेजिंग इट वॉज,
0: मतलब
1: पहला शॉट सुमिता के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमिता के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था।
0: अच्छा,
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी। तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा,
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है।
0: अच्छा,
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है।
0: ओके,
1: मेरा जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ, हाँ।
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के

0: चली जाती है, इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था, तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं
1: है तो बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं।
0: जी जी जी,
1: और बहुत विनम्र होते हैं,
0: बहुत विनम्र होते हैं। इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो किस पे चला रहे हैं कुछ।
1: जी, जी,
0: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित्रा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता, लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर
1: जी,
0: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
1: अच्छा,
0: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर से तू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं ये सीन नहीं है। आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे।
1: अच्छा,
0: कि यार रुपल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है। तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी,
0: वो ज्यादा मैटर करती है।
1: बिल्कुल,
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है या मराठी में आवंडा गेड़ा समझते अपन,
1: एक घूंट लेने की घूंट
0: वो है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा था,
1: प्रयास करना
0: पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए।
1: हाँ।
0: लेवल तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, शी इज सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली, बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जा रहा था फिर मैं। मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है, इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
1: जी,
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए तो ही मजा आएगा। तो आई यूज्ड टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूं जितने भी लाइन्स आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज्ड टू राइट इन माय वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
1: जी जी,
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी,
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
1: जी।
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया, घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा,
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है। तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तेरा रोज कहां से आएगा। तो नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
1: अच्छा,
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
1: अच्छा,
0: दिखता है बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा
1: अच्छा,
0: किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया, उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है।
1: जी जी,
0: मैंने बोला सर काम अच्छा करता है क्या? अरे बहुत अच्छा।

0: याद उंदा।
1: अच्छा अच्छा
0: अहमदाबाद वाला चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में, उनको बताया कि ये वही है। ब्रदर ने बिलीव नहीं किया कि आप क्या करोगे आप।
1: ये बिल्कुल रोमन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
0: ट्रू।
1: जी। तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
0: बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ,
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात।
1: और क्या चाहिए। क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा। और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार।
1: क्या बात।
0: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए, कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी रामजी लंदन वाले।
1: अच्छा। हाँ,
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा।
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो।
0: उन्हें वहां पे रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है।
1: हाँ।
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है।
1: हाँ।
0: गाड़ी देंगे आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं।
1: हाँ।
0: मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ।
1: हाँ, हाँ।
0: तो मजा तो वही है।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे वही अच्छा लगता कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे।
1: क्या बात है।
0: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा।
1: हो, आइए सुनते हैं।

अभिनेता विपुल देशपांडे से। जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी नगमों व गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमें।

अभिजीत की काय नगमे आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप ये नगमा फिल्म डंकी मूवी से। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गदर 2 से। आवाज है नीति मोहन की और मिथुन गीत।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: फिल्म संगीत की अगली पेशकश में आपको सुनवा रहे हैं जवान फिल्म से ये नगमा, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। शब्द रचना है कुमार की।

किसी का भाई किसी की जान फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत पलक मुच्छाल हिमेश रेशमिया और कमाल खान की आवाज में। संगीत था हिमेश रेशमिया का। इसी कड़ी में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुंडे से। आवाज है अरिजीत सिंह की, संगीत है सोहेल सेन का।

0: ये नगमा आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म तू झूठी में मक्कार से। इसी नगमे के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि

0: रामबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्वार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटनास्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमरीका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

दो कलियां फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रवि का है संगीत। आज जन्मदिवस है अभिनेत्री नीतू सिंह का, तो चलिए सुनते हैं आज यादों की महफिल में उनके ही द्वारा अभिनय के द्वारा सजाए गए गीतों को।

0: हम सुन रहे थे याराना फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल और राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत रफू चक्कर फिल्म से कंचन शैलेंद्र सिंह की आवाजें गुलशन बाबरा के हैं बोल और कल्याण जानन जी का है संगीत

0: हम सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत राजमहल फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, वर्मा मलिक और तुलसी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में योगेश के बोल राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से। सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर हाजिर होगा आपके बीच में बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर लेकर आते हैं हम कुछ बातें यानी इबारत के रूप में और ढूंढते हैं कुछ नगमों को। आज की इबारत है, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यक है, पर इनके साथ वे छोटे छोटे सपने और अपनापन भी जरूरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियां इन्हीं जीवन रंगों को जीते हुए कभी डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, वकील, पुलिसकर्मी, गायक गायिका, बावर्ची, टूरिस्ट गाइड, तांगा चालक या अनेक अन्य किरदारों में नजर आते हैं। तो आपको बताना है आपका कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किस किरदार या गणवेश में आपको अधिक पसंद आया। हो सकता है आपकी और हमारी पसंद और उनसे जुड़े गीत भी एक जैसे हों, और यदि ना भी हों तो उन सुनहरे दिनों को याद करके अपनी यादों को ताजा करने का आनंद ही अलग होगा। चलिए चलते हैं, हम उन साथियों के संदेशों को पढ़ते हैं जिनमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के गद्यांश में जीवन की बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया है, इसे जीवंत बनाने वाली फिल्म किरदार की बात कही गई है। छोटे छोटे सपने होते हैं जो मन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी और जटिल पहेली नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों और एहसासों का खूबसूरत गुलदस्ता है जिन्हें हम रोज जीते हैं। खुशियां हमारे भीतर ही मौजूद है और इसी तरह से उन्होंने सारी बात कही है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है या कोई व्यक्ति वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वह अपना काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, पर अभिनेता और अभिनेत्री उस किरदार को किसी फिल्म की कहानी की जरूरत के हिसाब से निभाता है, अभिनय करता है और उसके हिसाब से उसका मेकअप किया जाता है। शायद वह स्वयं का मेकअप भी करता होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की तरफ, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस गीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि डाकिया से मिले कितने दिन हो गए हैं, या पिछली बार किसी को चिट्ठी या खत कब डाला था, बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गो, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो ना।

डाकिया डाक लाया, और ये डाकिया हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप पिछली बार डाकिया से कब मिले थे, तो हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि हम मिले तो कई दिनों से नहीं, लेकिन आज आपने मिलवा दिया। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात देखिए ना कि ये जो डाकिया के रोल में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और ये गीत उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। पत्र मिलने वाले के दिल की बात इस गीत में कही गई है, साजन के आने की खबर, शादी की बात, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बता रहे हैं कि आकाशवाणी और डाक से उनका गहरा संबंध था, परंतु अब कम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम भी तो मनचाहे गीत लेकर आते हैं ना आपके बीच में, तो अपने पत्र हमारे पास भेजते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल ने हमसे चिट्ठी और खत लिखने का काम कम हो गया, खत्म ही हो गया है, और मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। कई साल हो गए खत लिखे, डाकिया अब भी कम नजर आ रहे हैं। खत आप विविध भारती के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी श्रोता बताती है कि कभी उन्होंने एक पोस्ट पार्सल किया था और किसी के शुभकामनाओं के साथ उसके उनके जन्मदिन के लिए ड्रेस भेजी थी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम चल रहे हैं हमारे श्रोताओं की बातों की ओर, कि वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से किरदार पसंद हैं, जिसमें राजेश खन्ना का ये डाकिया डाक लाया, उसके साथ पलकों की छांव में जो गीत है उन्हें पसंद है, बड़ा अच्छा किरदार था इस फिल्म का। इसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों को पसंद किया है, और हम ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पलकों की छांव में फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब हमारे श्रोताओं ने बताया है कि जैसे थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने इस फिल्म में डॉक्टर पिया नाम की मेडिकल छात्रा और डॉक्टर का किरदार किया, आनंद में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार किया, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी पुरुष महिला रोग जो पुरुष डॉक्टर हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ का किरदार निभा रहे थे, वह काम किया। कबीर सिंह में अभिनेता शाहिद कपूर की एक बड़ी जुनूनी गुस्सेल अलग तरीके का किरदार निभाया, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में निभाया। इसके साथ ही कई सारी चीजें हैं जो कई सारे किरदार हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, कभी एक गुंडे का किरदार भी करते हैं, और कभी कभी कई किरदार ऐसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी डर जाते हैं, और शायद यही अभिनय की पराकाष्ठा है और वो वहां से जीत जाते हैं। हमारे श्रोता बताते हैं फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने एक मेहनती पिता का किरदार निभाया जो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है। आत्मसम्मान और परिश्रम के बल पर वह संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, तो बताइएगा कि ये जो गीत है इसमें हम किस किरदार की बात कर रहे हैं, किरदार कौन है और किरदार करने वाला कौन है, दोनों चीजें आपको बतानी है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपकी है तो जरूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है, ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बचपन में आपने देखा था और सोचा था हम ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है, बहुत सारी बातें इसमें हुई थी। लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है। बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे। गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियां बांटता था, गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे। क्या बढ़िया बात है ना, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिल एक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठकर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गांव में और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं, इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गांव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा, अंतर्देशी मिला, उसे संभाल कर रखे हैं, इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है और इसने रोजी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत है और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं और उन्हें विनोद खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है। क्या बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे

श्रोताओं ने बहुत सारे बहुत प्यार से उत्तर देखे और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिल उठने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी में भी बड़े सलीके से सहेजे हैं। कभी सफेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुनों की महफिल सजाते गायक गायिका, स्वाद बिखेरता हुआ बर्ची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू हमारे फिल्म के पर्दे पर ले आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके गीतकार बता दीजिए, और फिर वही पहचानना है कि किरदार और अभिनेता दोनों का नाम बता दीजिए, ये किरदार कौन सा है और उस किरदार को कौन से अभिनेता ने निभाया है। बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको बताना है इसके गीतकार का नाम भी।

तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये गीत हम सुन रहे थे उस फिल्म से जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। और जब हम आपसे पूछे तो आप गलत कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि बाबरची फिल्म से है, और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कैफी आसमी, बिल्कुल सही उत्तर है। और हम बता दें कि इसे गाया है मन्ना डे ने। बड़ा खूबसूरत सा गीत है ये, और इस गीत के लिए सभी ने बड़े अच्छे से पसंद भी किया, प्यार भी किया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने ये बावर्ची का गाना है और इसे टीवी पर देखा है, इन्हें याद नहीं है। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, पहले घर पर तार का बना हुआ एक हैंगर हुआ करता था जिसमें पिताजी आने वाले हर पत्र को बहुत सलीके से फंसा कर रख देते थे। आज तो पिताजी है नहीं, और समय के साथ हैंगर भी गायब हो गया है। जी हमारे घर पर भी यही होता था, सभी के घर पर ये चीज होती थी उस समय। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबरची फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बाबरची का रोल निभाया, एक संयुक्त परिवार के मन मुटाव को दूर करके आपस में सद्भावना और लगाव को लगाने की, फिर से जगाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेरणा देने वाला किरदार है, बिल्कुल सही बात है ये कि इतना सुंदर किरदार उन्होंने जो निभाया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि ये गाना राग हेमंत में है और मन्ना डे की आवाज है, बाबरची फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ इस फिल्म में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजेश खन्ना की बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाया है। ये फिल्म कितनी बार भी देख लें बुरा नहीं लगता है ना। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा साधारण पोस्ट कार्ड की वर्तमान कीमत 50 पैसे है, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड दशकों पुरानी बात है, और वह बदल गया। जी बिल्कुल, बहुत समय बाद बदला। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने फिर से मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हम पोस्ट कार्ड तक पहुंचने लगे हैं, ये भी तो एक अच्छी बात है ना हमारे और आपके मिलने का। हमारे श्रोता को डाकू के रोल में धर्मेंद्र और सुनील दत्त इतने बेहतरीन लगते हैं कि वह छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वास्तव में डाकू ऐसे होते होंगे, शायद होते भी होंगे, हम सब ने तो देखा ही नहीं है ना। और भी बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे दूसरे और भी किरदार होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उन किरदारों के बारे में भी, उन किरदारों के नाम भी आप

लिख सकते हैं हमारे साथ में, तो आप जरूर लिखिएगा हमारे साथ में। और हमारी एक श्रोता ने एक किरदार के बारे में जिक्र किया है कि बलराज साहनी की स्वाभाविक अभिनय बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने 2 बीघा जमीन में रिक्शा वाला की भूमिका निभाई थी। कलकत्ता में उस समय हाथ से खींचने वाला रिक्शा चलता था। हाथ से खींचने वाले रिक्शे वाले का असाधारण अभिनय किए थे बलराज साहनी, और उनका यह किरदार जो है वह उन्हें बहुत अच्छे से याद आता है। अब देखिए जंजीर में इन्हें प्राण, एक श्रोता लिखते हैं, प्राण साहिब ने गुंडे का किरदार निभाया था जिसमें उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में वह देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं कि अभी हम जो इन सभी किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में टारजन का किरदार देखा था और सोचा था ऐसे ही बिंदास उन्मुक्त होना है। आप टार्जन होना चाहते थे, बढ़िया बात है। वैसे सही बात है, जंगल में रहो, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। वैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक किरदार है तेल मालिश वाला, सर जो तेरा चक्रा है। हाँ, ये भी जीवंत अभिनय है जॉनी वॉकर का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है। हम सब चीजें नहीं पढ़ सकते, परंतु हम आप तक अगला गीत जरूर पहुंचा सकते हैं। और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे, इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है। अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, गायक बता दीजिए और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में 2 डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, जरूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बैनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहां पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया, और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में

एक दो तीन चार पांच या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हो, वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसी कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए, एक ही प्रश्न दे रही हूं इस बार में आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद है, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद है जहां पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा जरूर।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ये याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मजेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूसरा राम, तीसरा राम का आईएस जौहर ने, अभिनेता आईएस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था और बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानु नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी, माँ पिता, बहन, सारे रोल उन्होंने ही किए थे। जी जुड़वा, बेटों की तेहरी भूमिका कई सारे निभाए हैं अमिताभ बच्चन ने, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में। राणा रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु, दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है, इसके बारे में, आंटी नंबर 1 के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमी पर की बात करें तो वहां पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर होस्टेस बनती है नीरजा 2016 की इस फिल्म में, और क्या बढ़िया किरदार निभाती है। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताया, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में, और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल।

इसी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर, तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीजें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की, और फिल्म जॉली एलएलबी में अरशद वारसी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट सोलंकी पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का, और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का, जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना पलसी कक्कर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का, और किरदार रामनाथ गुप्ता रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सबसे मिलती हैं। ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो जरूर साझा कीजिएगा, और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार है वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है। दोनों चीजें आपको बतानी है, वो किरदार गायक अभिनेता कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में, और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया, और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं। यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारो जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हो गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप जरूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, जरूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा खोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी हैं, उनका उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर सा गीत है, ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए। पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती है, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के गायक कलाकार कौन है।

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी हर माँ ने कितना प्यार दिया है और आप सब ने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है और उन माँओं में से आप सब ने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद है, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद है, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी से जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत, अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन है।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में भौतिक उन्नति से ज्यादा आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति का मुख्य अर्थ अपनी आत्मा को सांसारिक विकारों और अहंकार से मुक्त करना है। ये नियमित ध्यान, आत्मसमीक्षा और निष्काम सेवा के अभ्यास से संभव है। सही और सकारात्मक विचारों को अपनाकर ही मन की शुद्धि संभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना आत्मिक उन्नति की पहली शर्त है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही हो। हमारा दृष्टिकोण गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत होंगे और गलत क्रियाकलाप से जो परिणाम सामने आते हैं वे भयंकर दुखदायी होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों की तलाश करें जिन पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई हो। और ये चार आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आधार ऐसे हैं दोस्तों जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। मसलन बीज एक, जमीन दो, खाद तीन और पानी चार। इन चारों को मिलाकर ही किसी पेड़ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये चारों चीजें बेहद जरूरी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति अहंकार और विकारों को मिटाकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की प्रक्रिया है, यानी ये बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की यात्रा है।

अपनी व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्ममंथन बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें खुद का आंकलन करके अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्मपरीक्षण या आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है। जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है। आत्म समीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा बेहद जरूरी है।

सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। हालांकि खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आंतरिक शांति की जरूरत होगी, और जब तक आंतरिक शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन को शांत रखें। मन की सच्ची शांति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट नहीं है तो कोई भी सुख अधूरा लगता है। इसलिए नियमित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांभानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्वार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी

0: ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किये। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे यह भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ

0: रात मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज चल डमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमरीका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ।

0: समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत अपना बना के देखो फिल्म से मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के पोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को। नमस्कार।

0: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
1: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
0: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हमें ना शिकायत

0: शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
1: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश कैसे जाए कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा, लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है,
0: हाँ
1: लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
0: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन ना हो हमारी मन चाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं। ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
0: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात अपने जज्बात अपने भाव अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत बात कही,
1: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
0: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
1: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
0: बिल्कुल, और साड़ियों का संसार इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी जो बहुत फेमस है, कोटा डोरिया उसके बारे में।
1: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
0: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती हैं ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
1: अच्छा।
0: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी,
1: तो गाना
0: तो
1: बड़ा अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं।
0: क्या बात,
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है, उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है। सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें। चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहें।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारे सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
1: और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
0: बिल्कुल
1: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उद्घोषक जो खासतौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारी श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते हुए, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझ गई है ना? तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए, हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है।
1: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है, इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
1: तो हमारी जो श्रोता है

0: उनके शब्दों की तलवार ना चले इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है। गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
1: क्या बात है? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा। धूप अगर तीखी है तो छांव का

0: धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियां और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना?
1: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूं कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है, और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखी, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा, हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को, उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी

0: मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई, ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं। शुक्रिया अदा करने वाले जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों सी महक फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है। तो शिकायत किस बात की, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
1: बिल्कुल बता देती है। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
0: तो अभी गीत सुन ले।

0: संस्कृत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना? तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं 18वीं जो शताब्दी थी

0: उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास अभी जो मैसूर क्षेत्र है ना, वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया, जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुनाया गया जो आरामदायक कपड़ा था, इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं, जिन्हें खट कहा जाता है, आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई, और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा, जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया।
0: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया, ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहां की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है, तो वहां की महिलाएं इसीलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती
1: हैं। बिल्कुल सही कहा, वहां जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
0: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना, उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
1: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं, लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
0: और आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का चलन है, तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं, तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
1: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है। पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है, ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी, बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम, और ये बहुत हवादार होता है, जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं, जिसे खट अभी आपने बताया, खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
0: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना, वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होता है ना, बहुत
1: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
0: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इसे असली डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
0: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है, बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहां बारिश नहीं है गर्मी है, वहां के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुंचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और

0: वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल, बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं हो।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया
3: जी। और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी, या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के तीन शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल। और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने तीन उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा
2: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो। सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी, लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
3: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
2: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल
3: जी,
2: है ना, सही कहा, और करनी में फर्क हो जाता है।
3: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नीयत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नीयत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है

0: ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देखिए बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आंच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब

0: की तरह ही हल्की चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आंच धीमा पर तलने में तेल पिएंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल को धोकर एक घंटा भिगोएं, पानी को निथार कर चावल, दो चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ है और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ है।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी,
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी,
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी,
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे

0: भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
0: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
0: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल।
0: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहां पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाज आई है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दूर हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता
1: तो
0: है।
1: ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ाव रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते
1: जी, जी।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
0: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके। और

0: आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: उरारी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर। उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई न कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पल्वित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था।

उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमकड़ी को ही देता हूँ ना। मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता और मेरे पाठकों ने मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और

0: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं, कालिदास का विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, जी।
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी
0: जी, जी।
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा नयन नयन बिनु बानी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नयन बिन बानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक है, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राणी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है, ये जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
1: जी।
2: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है, मैंने बताया आपको। कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो, बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं, तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी।
2: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
2: मध्य क्षामा चकित हरडी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
2: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी, और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
2: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने

0: किसी को दिया बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
0: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था, तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, तीन कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आजादित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृद भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहां से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत
1: जी। तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: जी, जी,
1: ये हम समझ सकते
0: जी,
1: हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे ये गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला
1: कभी
0: का।
1: क्या बात जी, है फिल्म पगला कहीं का
0: जी,
1: ये गीत हम सुनते हैं और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी, कर जी, पाएंगे। जी जी जी हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: मुझे।
1: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
0: जी
1: को लेकर
0: जी
1: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
0: जी जी जी मुंदागिरी जी, इससे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
1: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
0: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूं मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन व्यंगार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो। 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
1: जी।
0: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूं मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाऊं, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूं, वहां जब पहुंचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
1: अच्छा,
0: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
1: जी
0: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
1: जी।
0: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
1: जी।
0: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूंगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
1: जी।
0: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेष अंक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेष अंक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी, उनकी उस समय उम्र हो गई थी और ज्यादा करीब करीब

0: वह मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे, तो सारी तैयारी हमने फोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का, तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी, बिल्कुल।
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसको
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़कर के हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी,
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है
1: बिल्कुल। तो रेड्डी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं। कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन सुनाए तेरे।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती है। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी की प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर राम दर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: राम दर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर ये प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकार की भाषा में चमचागिरी कहते हैं, यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली, और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के, साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहां तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए, खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा,
1: उनकी पुत्र वधू ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं।

0: हैं
1: और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
0: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
1: जी,
0: हैं
1: जी, हाँ, जी,
0: उसके बाद
1: जी,
0: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
1: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
0: जी।
1: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
0: मेरे गीत अमर कर दो,
1: ये मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत सुंदर
1: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
0: आई सुन जी।

0: पुराणी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, मुझे लगता है कि स्थायी नहीं है। पुस्तकें स्थायी हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय, उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आए, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, ये योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है? कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह

0: उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगी, उनकी वो पात्र हैं, वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों की मोहताज नहीं है। इस चीज को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री पे ऋणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था, कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूं कि जब तक मातृशक्ति मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं। तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी।
0: जी मुंडाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ, बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्दे में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने पाठक के सामने ये चीजें आए तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपको पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, वो सुनता रहा हूँ मैं, उनका एक गीत है ओहरे ताल मिले नदी के जल,
1: क्या बात है,
0: नदी मिले सागर से, ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हरिशंकर राडे जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहां मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया गया। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है, FM बैंड 103 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

युवा श्रोता सुन लेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 5:05 पर विविध भारती के कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम 5:30 पर और रात्रि के ठीक 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम 6:30 पर और शाम के ठीक 7:00 ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम बैरानी बात।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे आज की सभा के शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विवरण की ओर।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। फिल्म संगीत आपको सुनाया जाएगा रात्रि के ठीक 10 बजे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या रात्रि के 8:45 पर और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आइए अब आपको ले चलते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण की ओर। प्रातः के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रामचरितमानस गाना सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे खेती निपात। आदिवासी लोक संगीत आप सुन पाएंगे 6:50 पर। और 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन।

प्रातः के ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम कुछ दिल से की प्रस्तुति आप सुनेंगे 8:15 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे प्रातः के 9:30 पर। सुगम संगीत का आनंद ले पाएंगे आप प्रातः के 9:10 पर और 11 बजे। फिल्म संगीत आपको सुनवाया जाएगा 11:30 पर और 12 बजे से आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए। अब युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी।

का समय तय है, जिंदगी में धैर्य रखना सीखो, फल की चिंता छोड़कर खामोशी से आगे बढ़ना सीखो। मंजिल आज नहीं तो कल मिलेगी, ईमानदारी से मेहनत करना सीखो, वक्त के साथ सब सुलझ जाएगा, खुद पर यकीन करना सीखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्पिता जैन, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मानसून शुरू हो चुका है, सभी और बारिश का नजारा आपको देखने को मिल रहा है, सब तरफ बारिश हो रही है। और दोस्तों, बारिश का मौसम सबको पसंद आता है, क्योंकि ये मौसम मन को लुभाने वाला होता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है, वातावरण भी एकदम सुहाना सा हो जाता है। दोस्तों, ये बारिश का मौसम जो पानी लेके आता है, ये पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए इस वर्षा ऋतु में वर्षा जल संचयन कर हम पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, और पानी की कमी को हम वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकते हैं जो जरूरत के समय हमारे काम आए। दोस्तों, वर्षा जल संचयन का मतलब है बारिश के पानी को एकत्र करना, उसका संरक्षण करना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। दोस्तों, इसके लिए छत से जो गिरने वाले बारिश का पानी है, उसको पाइप के द्वारा टंकी में एकत्र करें, उस पानी को ढक्कन वाली साफ टंकी में सुरक्षित करें, जिससे वह पानी गंदा ना हो, और इस पानी का उपयोग बागबानी, सफाई, घरेलू कार्यों, शौचालय आदि कार्यों में भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है, यह पानी पौधों को पानी पिलाने के भी काम आ सकता है, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होता है। वर्षा जल संचयन से बिजली की भी बचत होती है, क्योंकि जो भूजल से निकलने वाला पानी है, उसके लिए कम पंपिंग करनी पड़ती है। यह पानी दोस्तों खुले मैदानों में गड्ढा खोदकर भी इकट्ठा किया जा सकता है, जो बाद में भूमिगत जल स्रोतों को बढ़ाने में भी काम में आता है। छतों पर पाइप लगाकर, टैंकों में स्टोर करके या सोखता गड्ढों के जरिए भी इस जल को इकट्ठा किया जा सकता है। दोस्तों, छत पर वर्षा का जल संचयन करने के लिए छत की सतह साफ रखनी जरूरी है, ताकि पानी में गंदगी न मिले। पाइप के शुरुआती हिस्से में जालीदार फिल्टर या फर्स्ट फ्लश उपकरण लगाएं, यह पहली बारिश की धूल गंदगी अलग कर देता है और पानी साफ सुथरा टैंक में जाता है, और यह घरों के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका होता है। और दोस्तों, बात करें यदि पानी को सीधा जमीन के अंदर पहुंचाने की, तो खुले मैदानों में लंबी खाइयां बनाकर उन्हें पत्थरों से भर दें, ताकि बारिश का जो भी पानी है वह वहीं रुके और जमीन में समा जाए, इससे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, इस वर्षा का जल गर्मी के पानी की समस्या से मदद मिलती है। जब यह वर्षा जल संचयन होता है, तो इस पानी का उपयोग गर्मी में सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि गर्मियों में सूख रहे कुओं और बोरवेल का जल स्तर इस पानी से फिर से ऊपर उठने लगता है। तो इस मौसम आप भी वर्षा जल संचयन करके और उनके अनेक उपाय अपनाकर पानी की बचत कर सकते हैं और जल संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा गया है ना, जल है तो कल है, इसीलिए वर्षा जल का संचय करें। दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: दोस्तों, कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी कार्य कभी भी सीखा जा सकता है, बस मन में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सीखना जारी रखें। दोस्तों, सीखना जीवन का वह पहलू है जो आपके जीवन में नए नए रंग घोलता है और नएपन का एहसास भी देता है। हर युवा को सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ नया सीखते रहना चाहिए। नया सीखने से ज्ञान और अनुभव का विकास तो होता ही है और एक मन में एक नई उम्मीद जगती है कि मैंने आज कुछ नया सीखा। इसीलिए हमेशा प्रत्येक युवा साथी को नया सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। दोस्तों, सीखने की इच्छा हमारे मन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए हमें तैयार करती है, नए क्रिएटिविटी और नए आइडियाज देती है। हर समय कुछ नया करने का उत्साह हमें रहता है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप केवल किताबों से ही कुछ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बार अपने और दूसरों के ऊपर आई हुई परिस्थितियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, अपनी और दूसरों की गलती से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और यही आपको बड़ी सफलता भी दे सकता है, क्योंकि गलतियां न होना सफलता की पहचान है। बहुत बार सफल होने के अनुभव आपको सिखाते हैं कि हमने कहां, कब, कितनी गलतियां की है जिससे मुझे हार का सामना करना पड़ा था और आगे मैं यह गलतियां दोबारा नहीं करूंगा या दोबारा नहीं करेंगे हम यह गलतियां। इस कई बार दोस्तों दूसरों के द्वारा किया गया धोखा भी हमें बड़ी शिक्षा दे जाता है। इसीलिए सफल होने के लिए सीखते रहें। दोस्तों, सीखने की आदत हमारे व्यक्तित्व और सोच को आकार देती है। नियमित रूप से अध्ययन, जिज्ञासा बनाए रखना और नए अनुभव सीखना हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखें, नए आइडियाज मन में लाएं और कुछ न कुछ सीखते रहें, सीखना जारी रखें। क्योंकि जितनी इच्छा सीखने की होगी, जीत की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए सीखना

0: ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और हंसराज हंस की आवाजों में। संगीत था नुसरत फतेह अली खान का। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मर्यादा का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते शोरम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: तराने नए पुराने।
0: श्रोताओं, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरानी नई पुरानी। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म ताल का ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और एआर रहमान ने धुन बनाई है। अनुराधा श्रीराम, एआर रहमान, सुजाता और सोनू निगम की आवाजें हैं।

0: तीसरी मंजिल, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरानी नई पुरानी। इस कार्यक्रम के शेष गीत आपको समाचारों के बाद सुनवाए जाएंगे। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग

0: को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा कर दी जायेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाश।

समाचारों के बाद आप सभी विविध भारती सुनने वालों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जो जीता वो ही सिकंदर फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

सूरज फिल्म से ये गीत है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खामोशी का ये गीत, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जतिन ललित का ही संगीत।

सितारा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर भूपिंदर की आवाजों में। गुलजार के बोल थे और आरजी बर्मन ने इसकी धुन बनाई थी।

0: और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत।
1: तराने नए पुराने।
0: फिल्म का नाम है चलते चलते, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, तर्ज जतिन ललित की।

अर्पण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार का इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलमीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार अलर्ट। बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2.25 लाख क्विंटल का राज्य बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की जमीनी स्थिति जानी। केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली से NHAI और मंत्रालय के आला अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी रहा। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर चर्चा की। इस दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरे में अलवर जिले के पिनान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने

0: चल भी रहा। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर चर्चा की। इस दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरे में अलवर जिले के पिनान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री गडकरी से मुलाकात की। अलवर और दौसा के बाद केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी कोटा के लिए रवाना हुए। वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास बन रही दरा टनल का भी जायजा लेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहेंगे। अब से कुछ ही देर पहले तीनों नेताओं ने बूंदी के लबान में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा जिले के खातोली में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 71 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क निर्माण, संपर्क मार्गों के विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल सुविधाओं से जुड़े काम शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली नई सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत तथा संपर्क मार्गों से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। इससे आम लोगों का जीवन अधिक सुगम और सुविधाजनक होगा।
1: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने की पानी की समस्या रहेगी, न बिजली की समस्या रहेगी। यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर काम चलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो वर्षों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई कि नए रास्ते खुलेंगे।
2: यह वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने शिलान्यास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, और भविष्य में भी वो जो आवश्यकताएं हैं, हम जनता की अपेक्षा पर खड़े उतर के उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल और वित्त मंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पौधों के वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में सचिवों की समिति की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न योजनाओं, हरियाली राजस्थान अभियान और शहरी तथा ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़, जयपुर और कोटा पौधरोपण अभियान में अग्रणी है। मुख्य सचिव ने बताया कि शहरी सेवा शिविरों में अब तक 28,000 से ज्यादा पट्टे दिए जा चुके हैं, वहीं ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए 38 लाख से अधिक नागरिकों को फायदा पहुंचाया गया है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ अलनीनो चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय और सतर्क है। उन्होंने कहा कि जून महीने में कम बारिश के बाद अब जुलाई में स्थिति में सुधार आया है। इससे देश में कम बरसात वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगरानी तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। मॉनसून में देरी का सोयाबीन और कपास पर असर पड़ा है। किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और कम अवधि तथा कम पानी वाली फसल

0: फसलों की बुआई की सलाह दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जून महीने में चलाए गए खेत बचाओ अभियान के तहत 1,24,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे 80 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधे पहुँच बनाई गई। उन्होंने बताया कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,75,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार किया गया है, जिससे किसी भी स्थिति में बुआई प्रभावित ना हो।
1: हमने 2-3 तैयारियों और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे, और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो, उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे के बाद आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई दिशा देगा। श्री मोदी मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारत इंडोनेशिया साझेदारी मजबूत हुई है, साथ ही भविष्य का महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने विशेष जांच दल एसआईटी जांच का भी संज्ञान लिया है, जिसमें अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पीड़िता से संबंधित वीडियो और सामग्री को तत्काल हटाने को कहा है। देश भर में अब तक 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, करीब 5.25 करोड़ महिलाएं और 17 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलकर देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करना है, ताकि भारत को नशे की लत से मुक्त बनाया जा सके। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सलुम्बर जिले के जयसमंद क्षेत्र के देवपुरा में आज ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनों से ग्रामीणों की जांच की गई। इस दौरान 10 लोगों में टीबी के लक्षण मिलने पर उन्हें उपचार के लिए चिन्हित किया गया है। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट बताया है। बारा, झालावाड़ और कोटा में तेज बरसात का ऑरेंज, वहीं बाकी 33 जिलों में येलो अलर्ट है। कल सवाईमाधोपुर, कोटा और बारा में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की गतिविधियों में 10 जुलाई के बाद कमी आने की संभावना है। इस बीच आज अलवर, कोटा और बारा में बरसात हुई। भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद गरज के साथ कुछ देर तेज बारिश हुई। दोहलपुर में सुबह से ही रिमझिम बरसात का सिलसिला बना हुआ है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और उमस का दौर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार का इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार का अलर्ट। केंद्र सरकार अलर्ट। बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2.25 लाख क्विंटल का राष्ट्र

0: लिए बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है, अब आप माधुरी वशिष्ठ से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर झालावाड़ जिला संतरे की खेती के लिए अपनी खास पहचान रखता है। खूबसूरत स्थापत्य कला से बने किले और महल यहाँ की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत हैं। प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बसा ये जिला इन दिनों मानसूनी रंगत में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बरसात से कई इलाके तरबतर हैं, खेतों में नई फसल की तैयारी शुरू हो गई है और किसानों के चेहरों पर अच्छी उपज की एक उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज झालावाड़ जिले की चिट्ठी शुरू करते हैं। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्व संबंधी प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेयजल, बिजली, कृषि और अन्य विभागों के काम मौके पर किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अधिकारियों को समय पर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भवानी मंडी और झालरापाटन में जनसुनवाई और अटल जन सेवा शिविर भी आयोजित किए गए। इन शिविरों में लोगों ने राजस्व, पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, किसान सम्मान निधि और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। अधिकारियों को सभी प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई और अभियान को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष विभाग ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, पौधरोपण के कार्यक्रम हुए, श्रमदान जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया और अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। खेल संकुल में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इससे पहले झालरापाटन स्थित गोमती सागर और द्वारकाधीश मंदिर में प्रदेश में अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि और जन कल्याण की कामना के साथ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। उधर मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों की निगरानी, साफ सफाई और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कैंसर और सिकल सेल जांच, टीबी जांच तथा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कामों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम भी लगातार जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कृषि विभाग किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है। जिले में पेयजल, बिजली और सड़क संबंधी कामों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों को आवश्यक

0: समय पर उपलब्ध कराने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेरी गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामारो जायजो लेवन सारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर किन्नो। राज्य सरकार ई चौमासा माय 10 करोड़ पौधा रोपणो तय किन्नो। पौधा देवण और रोपण रो काम मिशन मोड माथे। अल नीनोरी चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजारी उपलब्धता तय करण बाबत पौने 2 लाख क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए नाबालिग टाबरी सागे यौन दुराचार रा मामला माए संज्ञान लीनो। 15 दिन माए रपट मांगी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रो दौरो किन्नो। वे सड़क री गुणवत्ता, एक्सप्रेस वे माथे हिफाजत री व्यवस्था और मुसाफिरा रा सुविधाओं जुड़िया हालात रो जायजो लीनो। केंद्रीय मंत्री दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंत्रालय रा आला अहलकारा सागे दौरो किन्नो। वे एक्सप्रेस वे माथे सड़क हादसा री तादाद माए कमी लावन रा उपायों रा बारा माए चर्चा किन्नी। इस दौरान हादसा री शंका वाली ठोड़ा री पिछाण और हिफाजती मानका री पालना और कड़ाईयों करावन रा बारा माए चर्चा करी जी। अलवर जिला रा पिनान माए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी श्री गडकरी मुलाकात किन्नी। अलवर और दौसा पाछा केंद्रीय मंत्री गडकरी कोटा सारू रवाना भया। मारो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कन्ने बन रही दरा सुरंग रोई जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वहां सागे रहवेला। थोड़ी देर पहले तीन ही नेता बूंदी जिला रा लबान माए राखी जा कार्यक्रम माए शिरकत कीनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा जिला रा खातोली री कृषि उपज मंडी माए राखी जा कार्यक्रम माए करीब 71 करोड़ रुपया रा खर्च वाला विकास रा कामारी नींव रखी और पूरा भया काम जनता ने सौंपिया। आम आए सड़क बनावण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीवण रा पानी रा सुविधाओं जुड़िया काम शामिल है। इस मौके श्री बिरला कहो के आ कामाओं न्यारा न्यारा गांवा ने जोड़बा वाली नवी सड़क बनावण और सड़क और पुलिया री मरम्मत और हल्का रा जुड़ाव ने तेजी मिलेला।
2: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने की पानी की समस्या रहेगी, न बिजली की समस्या रहेगी। यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर काम चलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो बरसों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज माना रहवास माथे ऊर्जा विभाग रा अहलकार सागे मीटिंग कर कामकाज रो जायजो लीनो। मीटिंग माए बिजली री पूर्ति लगातार बनाई राखण रे बारा माए चर्चा करी ची। इसागे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना रा तहत काम माए तेजी लावण रा हुक्म दिया चिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डीग बाईपास बनावण रा काम री नींव रखी। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी आ सड़क बनावण पर लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च करया चावेला। वो बाईपास बन जावण ई हल्का माए आवण जावण री व्यवस्था और चौखी बनेला। ई मौके श्री बेढम कहो के वो बाईपास बन जावण तरक्की रा नुआ गेला खुलेला।
3: यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने शिलान्यास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं और भविष्य में भी वो जो आवश्यकताएं हैं हम जनता की अपेक्षा पर खड़े उतर के उनके विकास

0: योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।
1: राज्य सरकार ई चौमासा में 10 करोड़ भत्ता पौधा रोपणो तय किनो है। ई सारो पौधा लगावण रो काम मिशन मोड माथा चलायो जा रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में सचिवारी समिति सागर मीटिंग में आ जानकारी दीनी। वे न्यारी न्यारी योजना में हरियालो राजस्थान अभियान और शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रा काम रो जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। मीटिंग में वन विभाग रा अहलकार बतायो के जयपुर बालोतरा बाड़मेर झालावाड़ और कोटा जिला पौधारोपण रा काम में अगाड़ी है। मुख्य सचिव बतायो के शहरी सेवा शिविर में हाल ताई 28,000 बत्ता पट्टा दे दिया गया है, जबकि ग्रामीण सेवा शिविर के जरिए 38,00,000 बत्ता लोगों ने फायदो दियो चियो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलमीनो रा असर री शंका न ध्यान रखता थका आज नई दिल्ली में आला दर्जा रा अहलकार सागर मीटिंग कीनी। वे कहो कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और साफ रणनीति सागर अलमीनो री चुनौतियां रो सामो करण सारू सक्रिय और सावचेत है। कृषि मंत्री कहो कि देश में जेठ महीना में भी कम बिरखा पाछे आषाढ़ में हालात सुधरिया है। देश में अब कम बिरखा वाला जिला की तादाद 262 घटर 178 रह गई है। मीटिंग पाछे खबर नवीसन सागे बातचीत करता थका केंद्रीय कृषि मंत्री कहो के अलमीनो री शंका न ध्यान रखता थका पूरी निगरानी रखी जा रही है। इबीच चौमासा री बिरखा मोड़ी सरू वेवन रे कारण सोयाबीन और कपास री साख माथे असर पड़ियो है। किसानों ने मक्का बाजरा मूंग और बेगी पाकन वाली और कम पानी री जरूरत वाली शाखा ने बुआई री राय दी जी है। कृषि मंत्री बतायो कि जून महीना में चलाई गया खेत बचाओ अभियान रा तहत करीब 1,25,000 कार्यक्रम रखी गया और 80,00,000 बत्ता किसानों ताई पहुंच बनाई गई। वे बतायो कि बीज री उपलब्धता तय करण सारू करीब 2,25,000 क्विंटल रो राष्ट्रीय बीज भंडार बनाई गयो है।
2: हमने 2-3 तैयारियों और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे और इसलिए हमने लगभग 2,25,000 क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरा पाछे आज ऑस्ट्रेलिया सारू रवाना भे गया। प्रधानमंत्री मोदी रो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सागे मुलाकात रो कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों बीच कारोबार निवेश रक्षा भणाई लिखाई और साफ ऊर्जा समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। विदेश मंत्रालय रा प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बतायो कि श्री मोदी रा इंडोनेशिया दौरा हुई दोनों देशों बीच सहयोग रा खास नतीजा सामने आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर में 13 साल री टाबरी सागे यौन दुराचार और मानव तस्करी रा मामला में श्री गंगानगर रा जिला मजिस्ट्रेट और एसपी ने 15 दिन में विगतवार कार्रवाई रिपोर्ट पेश करण रा हुक्म दीना है। आयोग विशेष जांच दल एसआईटी री ओर करीची जांच रोई संज्ञान लीनो है, जिन्हें तेत हाल ताई 18 आरोपिता ने गिरफ्तार करी चिया है। बाकी आरोपिता री बेगी गिरफ्तारी रा हुक्म ही दिया चिया है। इस आगे सगला डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मामला में पीड़िताओं जुड़िया वीडियो और सामग्री तुरंत हटावन सारू कही चियो है। देश में हाल ताई 23 करोड़ बत्ता लोग नशा मुक्त भारत अभियान जुड़ गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुजब आम आए 7,81,00,000 बत्ता नौजवान, करीब 5.25 करोड़ महिलावां और 17,00,000 बत्ता स्कूल कॉलेज शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कहो कि ई अभियान रा तहत नारकोटिक्स ब्यूरो राज्य और जिला प्रशासन पुलिस गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलर देश में नशारी लत न जड़ों खत्म कर

0: ਬੋਲਸਾਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਇ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਓਰੋ ਜਾਂਚ ਅਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲੂੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਇ ਜੈ ਸਮੰਦ ਹਲਕਾਰਾ ਦੇਵਪੁਰਾ ਮਾਇ ਆਜ ਲਗਾਈ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਵਰ ਮਾਇ ਲੋਕਾਂ ਰੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਵਾਸਥ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਜੀ ਅਰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਰੀ ਜੀ। मौसम विभाग आज जैसलमेर और बाड़मेर अलावा आखा राज्य में बिरखा विवन सारू चेतायो है। बारा झालावाड़ और कोटा माए तेज बरसात रो ऑरेंज जदके 33 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। काल सवाई माधोपुर कोटा और बारा जिला माए चोखी बिरखा रा आसार है। 10 जुलाई पछे बिरखा माए थोड़ी कमी री संभावना है। इविचे आज अलवर कोटा और बारा माए में बरसियो। भीलवाड़ा माई दोपहर पछे बादलों री गाज सागे थोड़ी देर ताई तेज बारिश हुई। धौलपुर माई सवारे हुई छांटो छिड़को भी हो। दूजी कानी जैसलमेर माई उमस और जोरदार गर्मी रही। जयपुर माई विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार री ओरों 16 जुलाई ने विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस रखी जावेला। जनता ने सुरक्षित और वैध प्रवासन के प्रति जागरूक करण और फर्जी एजेंटा और गैर कानूनी प्रवासन बचाव रा उपायों की जानकारी देवन सारू आ कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। इनो दूजा देशों माए काम कर रहा भारत रा लोगा और मजूरा नो भलो तय करण माए मदद मिलेला। कॉन्फ्रेंस माए राज्य सरकार री प्रवासी राजस्थानियों जुड़ी न्यारी न्यारी पहला कौशल विकास और सैर सपाटा में बधाओ देवन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथा विचार करियो चावेला। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा काम रो जायजो लेवन सारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर कीनो। राज्य सरकार ई चौमासा माए 10 करोड़ पौधा रोपण तय कीनो। पौधा देवण और रोपण रो काम मिशन मोड मत है। अल नीनोरी चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजा री उपलब्धता तय करण बाबत 2.25 लाख क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए नाबालिग टाबरी सागर यौन दुराचार रा मामला माए संज्ञान लीनो। 15 दिन माए रपट मांगी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी पासवाड़ा का FM माही चैनल है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम बैरानी बात।

0: से पछि दवा करावी है वो गोलियां खाई दो जिसे हो गया खाई हो भरावी दो
1: खरी बात है हाँ तो इन्हें मैं देखो आबू जी तमी को के खातर वालों ने सब खाए ने शरीर में बीमारी आवी
0: बीमारी आवे इसके सब सब सीजन में खतरनाक आवे आ बलबाना खातर पकतो तो आज आरो पड़तो ने आप चे आलमी अंगुलसन देने मोटा करे ने तरबूसन अंगुलसन देने मोटा करे पहले वाना खातर पकतो तो अबे पाके वाना खातर
2: ने माँ देखो तमे कह रहे थे को के सब खातर थे कि तो खातर थे कि आ शरीर तो नष्ट
0: शरीर खराब सही रही है क्या आ क्या ही नहीं पीते थे पहले मन्नत
2: तो तमे को के पहले जी घी वगैरह तमे को के गाय भैंस ने दूध काटते थे तो घी वगैरह भी खाते थे तो कितलो अच्छो
1: पमर तो
0: घी असल पमर तो ना सुला माते मेन तो मैं पाटली पमलती अभी घी पमले कने खाते हो तेल खा के घी खाइए खबर नहीं पड़ती
2: तमे आज भी अभी वर जी सोरा सोरी है एना ने हूँ केवा चाहो के भाई हरती खावानो हरती खान पान अपने करव पड़े तो अपने शरीर काठो रहे
0: अब तो हूँ खाई अब तो है ही खाई नहीं बीजू खाई तार खाणो बीजू खाणो खाता ही नहीं आवड़े एने नहीं अब जा होरो खाबो
2: कई रे 80 ની ઉંમર થઈ ગઈ એને તો ભી હજી કાટો દેખાઈ રહે થકો ખેતર ખેતર મે કામ કરો કે
0: ના ઘરે રો ખેતર ન જતી
2: ઓ ભાઈ દેખો હવે તો તમારે આ ઘર બારે સંભાળવું હોય સોરા અંબારવો હા
0: બહુ ઘરે કરે
2: ખરી વાત કેમ કે હવે તો તમારી ઉંમર થઈ ગઈ તો ભાઈ ખાટલે રો ને સોરા ને દેખો માં તમે થકી મળે ને મને તો પૂરી જાણકારી મળી કેમ કે ભાઈ જી ભી પેલે હું ખાતા હતા હું પીતા હતા તમે પૂરી વેવરા બન જાણકારી આલી
0: કે સાવલ રાન તો अब खाए चावल अब रोटी ला बैठक रोटी
2: तो माँ देखो तमें थे कि मलेन मने पूरी नवी मोटी सब जानकारी मली माँ राम राम राम राम
0: राम राम राम राम
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

हर मानवी नो आज काम है करव। देखो आज ना समय में अगर आप जल इकुटो करंगा, जल संरक्षण रखंगा, जल ने बसावी ने रखंगा, तो आवा वाला समय हरू आप हांगर में काम आएगा। क्योंकि अभी आ जल है धीरे धीरे करे में कम था तो जाहिर वो दे कर थको है। तो देखो बेनो भाईयो, आ जल आप जीवन नो एक आधार है। आपड़े मनुष्य है, पशु है, पौधा बदले है ने हर हरु जल वधारे जरूरी है। ये आवश्यक एक दायरो आपड़े बनी गयो है। पहले नती कहते कि जल ने बिना तो आपड़े कल्पना भी नती कर सकता। आज जल में कमी अपने देखाई रही थकी है, समस्या बनती जा रही है। इतने हरु जल संरक्षण करव बहुत जरूरी है। देखो बेनो, अगर जल आज बचाव रखांगा तो आवा वाला समय हरु आ आपड़े काम आएगा। अगर आपड़े खेतर में फसल करी थकी है, घर में पाए पौधा करी थक है, हुकाई रही थक है, तो आज ना अगर बारिश नो जी जल है बसावी राख्य हो तो काले हरु अपने काम आ सके। पर जल हरते बसाव है। देखो किसान भाई बहनों, जल ने एक तो पानी बारिश थे थको है तो अवे जी गाँव में है तो भाई कवेलू और जी घर है इन्हें तो अपने कही नहीं सकते। तो गाँव में जी जल बसावा तरीको है जिनकी छोटा छोटा डैम बने थका है, तालावरी बने थकी है, कुआ हुका पड़ा थका है। पहली बार तो इन्होंने साफ सफाई करे ने हित दी नारी थकी नारी कुआ में लगाड़े ताकि जी भी पानी पड़ेगा इन्हें नारी नारी जाएगा कुआ में, तराव में या जी भी छोटू डैम बने थको है। तो एक जल बचावानो आ तरीको है। क्योंकि अगर अने नारी थे कि कुआ में जाएगा, तराव में जाएगा, तो ई पानी ही बारिश नो इकट्ठो रहेगा। तो जितलू भाई पहले भरा तो इन्हें थे कि इन्हें बढ़ोतरी थी जाएगा। तो बेनो, आ हर मानवी ने हर नागरिक ने जिम्मेदारी है। घर ने अगर जिन्हें पक्का मकान है, छत बने थकी है, ये पाइपलाइन थकी अपने जल है एक पाइपलाइन लगा दे घर ने छत थकी जुड़ावी ने थोड़ो दूर या तो टाको बनावी ने राखे तो ही दो पाइपलाइन थकी टाका में पानी जाएगा तो ई भी इकट्ठो रहेगा। ई पानी है भाई ढक्कन बनावी ने राखे कसरो में जाए ने ई पानी पशु बदले है या पसे पेड़ पौधा बदले है, अगर फसल करी थकी है तो इन्हें बदले भी अपने काम में लाई सका। देखो आना समय में जल संग्रहण करव जरूरी है बारिश ना टाइम में। देखो अपने बांसवाड़ा में तो हजू भी वाकड़ना क्षेत्र में तो माई माता ने मेहरबान नहीं है अपने तो पानी अच्छो मिली रू थको है। पर आपड़े राजस्थान ने बाहर जिला में खूब समस्या पैदा थी रही है। घना किसान भाई है खड़ी फसल अगाड़ी लाचार थी रहा है, फसल ने बचा भी नहीं सकता तो किम ने भाई। आपड़े हर मानवी नो जिम्मेदारी है कि आना बारिश ना समय में जल संयन कर राखे, संग्रहण कर राखे, इकट्ठो कर राखे ताकि आवा वाला समय हरू जल है बचावी सको ने जल नो स्तर है अगर बढ़ी सके। बहनों आ तो आपड़े बात करी कि जल संरक्षण हरते राखव है। बहनों अगाड़ी बात अजी आपड़े करंगा, बेने बेटी थकी है ने सोरो भी भरे तो को है। पण बेने मारा हमें जोई थी थे की है कि बिना बेन तो वातिस करता जाई रो है, संध्या वाला नो टेम है, गीत होणो तो किमने बेनो गीत भी आपड़े होना पसे बीजी वात करा।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का।

ग्रामीण महिलाओं ने सुना उनका अपना कार्यक्रम बैरानी बात। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम।

0: खेतीबाड़ी सुनवाला सगड़ा खर्चा भाई अश्विनी कुमार सिंह को घणो घणो राम राम साहब। नरपत भाई थानू भी घणो घणो राम राम।
1: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम और साथ ही अश्विनी भाई आपने भी राम राम।
0: बिल्कुल राम राम नरपत भाई।
1: हाँ सर।
0: देखो आपने जो सबसे ज्यादा किसान भाई जो खेती बाड़ी में व्यस्त रहे और आज का समय की आप बात करा तो खेती बाड़ी के मायने आप ज्यादा पैदावार लेने के लिए ज्यादा उपज लेने के लिए आज खतरनाक रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं को आप प्रयोग करता रह जा जो कि देखो आपने लिए और आपने पशुओं के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। और आज की मांग भी यही है कि प्राकृतिक खेती यानी बीज उर्वरक और रासायनिक दवाओं को जो कीमत लगातार बढ़ती जा रही है जो आप रासायनिक दवाया जो भी आज आप खेता में यूज ले रहे था कृषि में यूज ले रहे था जिनकी कीमत आए दिन बढ़ती जा रही है जिससे खेती की लागत में वृद्धि भी हुई है। तो एक साथ ही किसानों जेब को पैसों भी भारी मात्रा में अपने जो पैसों जो कंपनियों का जीवन में जा रही है यानी दूसरों पहलू तो और भी

खतरनाक से, जिसे रासायनिक उर्वरक रासायनिक दवाओं का उपयोग से मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और आज सब चुनौतियों से निपटने के लिए आज की परिस्थिति में प्राकृतिक खेती एक अच्छा आप विकल्प देख सका था। और अब लोगों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़वा से प्राकृतिक रूप से पैदा अनाज सब्जी और फल की मांग भी

0: स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है और आसक्त चुनौतियों से निपटने के लिए आज की परिस्थिति में प्राकृतिक खेती एक अच्छा आपा विकल्प देख सका था और अब लोगों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़वा से प्राकृतिक रूप से पैदा अनाज सब्जी और फला की मांग भी बढ़वा लगी है। यानी आपा आज के समय में प्राकृतिक खेती की बात करा तो प्राकृतिक खेती में अनाज सब्जी और फला की बहुत ज्यादा मांग है।
1: प्राकृतिक कृषि बढ़िया पद्धति है जो भारतीय परंपरा पर आधारित है, जिसमें अपने जो पशुधन से या अपने स्थान रूप से व संसाधन पर आधारित है। इनमें आप जो रासायनिक उर्वरक है वो प्रयोग कौन करना मुक्त रह लियो और इसके लिए अपन का करना पड़ लो कि जो बायोमास होगी मल्चिंग होगी वर्ष भर अपन हरित आवरण अपनाना पड़ लो, अलग अलग फसल प्रजातियां में जैसे हरी खाद होगी, पोषक तत्व होगा, मिट्टी की उर्वरता प्रबंध होगा, खेत पर जो देसी पशु जैविक गोबर मलमूत्र उत्पादन बीजामृत जीवामृत और पंचगव्य वर्मी पास आदि चीजों को प्रयोग करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, और देखो प्राकृतिक खेती का उद्देश्य भी यही माना गया है नरपत भाई।
1: हाँ
0: जी, देसी गाय और स्थानीय जो अपना संसाधन है बामाला आधारित कृषि पशुपालन मॉडल आपने बनना पड़ेगा। इसके अलावा बाजार से क्रय आदाना से मुक्ति मिलेगी, लागत में कमी कर किसानों ने आय में भी वृद्धि लेना पड़ेगा। प्राकृतिक कृषि पद्धतियों ने आगे बढ़ाता होया प्रति जागरूकता पैदा करवो बोलो और क्षमता निर्माण प्रोत्साहित भी आपने करने बोलो। साथ साथ प्राकृतिक कृषि पद्धतियां ने बढ़ावा देना ताकि भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि कर सका और कृषक तथा पर्यावरण हितैषी कम लागत की परंपरा तकनीक द्वारा नुकसानदायक रसायन से पर्यावरण ने संरक्षित करना आज को आपनो मुख्य उद्देश्य है। यानी आपा रासायनिक उर्वरक रासायनिक दवाओं ने छोड़ और प्राकृतिक खेती की तरफ आपने आज
1: बिल्कुल चौकी बात बताया कि जो अपना किसान भाई जो रासायनिक खाद बीज यूज करे जे माने कम से कम करने था घर को मतलब और जो प्रकृति से प्राप्त है वह चीजा ने आप प्रयोग करें जिससे अपने जो कोई बीमारियां अपने पशुओं ने अपने बच्चा ने अपन खुद ने बीमारी ग्रस्त आप को नहीं होगा अगर आप प्रकृति से प्राप्त जो रासायनिक प्रयोग नहीं करला तो।
0: बिल्कुल, और देखो आज मैं शुरुआत में आप बात कर रहे थे कि देखो आज आपस में जो अपनी एक बढ़ती मांग के कारण और आपने कुछ लालच समझ लो या आपने ज्यादा पैदावार के कारण आप कई प्रकार का रसायन को उपयोग काम में ले रहे था लेकिन वो आपने लिए गलत है। आपने आज भी है जो पुराना साधन जिया साग गोबर हुए वर्मी कंपोस्ट हो अन्य काम में लेना चाहिए ताकि आप बीमारियों में दूर कर सका। और देखो अब अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाता गया एक प्यारो सो लोकगीत सुना इलाहा अली जाको।
1: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: नरपत भाई सुनया अलाजी लाई बाई को प्यारो सो गाणो बाई सारा बीरा और अब काय जानकारी दे रहे थे।
1: अब देखो जानकारी कितना पापा चला की खरीब फसलाम उर्वरक प्रबंध आके जानकारी देला एपी सिंह जी
0: तो सुना
1: बिल्कुल सुनो सा
2: किसान भैया जानकारी देवा का वास्ता स्टूडियो में पधार चुके हैं डॉक्टर एपी सिंह आप वरिष्ठ प्रबंधक है इफको जयपुर के मायने और आज अपन जानकारी देवाला खरीद की खड़ी फसलों में उर्वरक प्रबंधन ई विषय पर तो सांसों पहले तो एपी सिंह जी आपको स्टूडियो में गुणों गुणों स्वागत है सा राम राम सा
3: राम राम सा
2: और सबसे पहले थासु सवाल ओ रे लोगे राजस्थान के मायने जकी खरीद की मुख्य मुख्य फसलें है वे कौन कौन सी है सा
3: किसान भाइयों को जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य में खरीफ में प्रमुख रूप से बाजरा ग्वार मूंग उड़द मक्का ज्वार मूंगफली कपास आदि फसलों की प्रमुख रूप से खेती की जाती है
2: जी।
3: अब इन फसलों में अगर हम देखें तो सामान्यतः जब हम बिजाई करते हैं तो उर्वरकों का बहुत कम उपयोग किया जाता है क्योंकि खरीफ में प्रमुख रूप से वर्षा पे आधारित हमारी खेती होती है
2: जी।
3: तो अगर मानसून अच्छा होता है तो हमारी खेती अच्छी होती है, नहीं मानसून आया बारिश कम हुई तो फसल हमारी नहीं अच्छी हो पाती है। इसलिए सामान्यतः किसान भाई लोग बिजाई के समय कम उर्वरकों का या कम खर्चा करते हैं और जब फसल अच्छी हो जाती है या थोड़ा सा उसमें दिखने लगता है तभी उसमें कुछ खर्चा करने के बारे में वो सोचते हैं
2: जी। और बात करें आपों का खड़ी फसलों का मायने उर्वरक प्रबंधन के विषय में तो खड़ी फसलों के लिए उर्वरक प्रबंधन क्यों आवश्यक है सर?
3: जी देखिए किसी भी फसल के लिए उर्वरक इसलिए आवश्यक है कि जैसे हमें भोजन चाहिए प्रतिदिन के लिए ऐसे फसलों के लिए भी अच्छे व्यवहार के लिए उनसे अच्छी पैदावार के लिए
2: जी
3: उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है और इन भोजन को हम वैज्ञानिक भाषा में पोषक तत्व बोलते हैं जिनसे पौधों का पोषण होता है उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं
2: जी।
3: और हमारी जो मिट्टी है वो सामान्यतः इन सभी जो भी भोजन चाहिए पौधों को देने में एक समय अच्छी थी दे देते थे
2: जी।
3: लेकिन

0: आज के समय हम जहां ज्यादा खेती करने लगे हैं उस जमीन से अच्छी पैदावार वाले बीज का उपयोग करते हैं तो उनसे मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्वों का दोहन हो रहा है हर वर्ष, इसलिए हमें अलग से उनको पोषक तत्व या भोजन देने की आवश्यकता होती है जिसको हम उर्वरकों के माध्यम से देते हैं
1: जी।
0: और जैसे आपने कहा क्यों आवश्यक है, तो हम जब भोजन देंगे या उर्वरक देंगे तभी अच्छी पैदावार हमें मिलेगी
1: जी। यानी जी आप खानो खावा तो अच्छो खानो खाओ लादना है, अपना शरीर है जो स्वस्थ रहे लोग भी है किसान भैया, अगर अपन अच्छी पैदावार लेनी है तो अपन बढ़िया तरीका से उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। और अब आप बात करा कि किसान भाई उर्वरक प्रबंधन करना चाहे तो वे कद करे का ही तरीका से करे
0: जी। जी तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमें तरह तरह के भोजन चाहिए
1: जी,
0: उसी तरह से फसलों को भी 17 तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं और तभी हम उनसे अच्छी पैदावार ले पाते हैं। अगर उनमें से एक भी पोषक तत्व कम रह जाए तो वो जो हमारी मन इच्छा होती है पैदा लेने की या जितना हम ले सकते उतना नहीं ले पाते। और इन 17 पोषक तत्वों में जो 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं नत्रजन फास्फोरस और पोटास
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी है। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे जस्ता है, लोहा है, तांबा है, मैंगनीज है, और द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान है, इन सब की आवश्यकता होती है हमें देने के लिए
1: जी।
0: लेकिन इन सब में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास सबसे प्रमुख है
1: जी।
0: तो हमें कब करना चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर हम बिजाई के समय मिट्टी के परीक्षण करवाए हैं तो उस रिपोर्ट के आधार पर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाया है और हमारी जैसे समय काफी फसलें खड़ी हैं
1: जी,
0: तो उनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कमी के, उनसे हम जान सकते हैं कि किस पोषक तत्व की कमी है और उसको हमें अब देना चाहिए। जैसे कि हम नत्रजन की बात करें तो अगर इसकी कमी है तो हमारी फसल एक पीले रंग जैसा पीलापन खेत में हो जाता है वो दिखाई देता है, बढ़वार कम होती है फसलों की। साथ ही में देखेंगे कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं पौधों की वो सबसे पहले पीली होती हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है, तो हमें नाइट्रोजन से संबंधित उर्वरक को देना चाहिए। फिर फास्फोरस की अगर कमी है तो पत्ती या तो बहुत गाढ़े हरे रंग की हो जाएगी और ज्यादा कमी हुई तो वो बैंगनी रंग की हो जाती है
1: जी।
0: और पोटास की बात करें, अगर पोटास की कमी हो रही है तो नीचे की पत्तियां कि देखेंगे जो किनारी होती है पत्तियों की वो जलने लगती है, मतलब जलना शुरू हो जाती है, उनमें उनकी सेल मर जाती है और अंदर की तरफ वो बढ़ता है, तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं किस पोषक तत्व की कमी है। अगर हमें पहचान हो गया कि हाँ इस पोषक तत्व की कमी है तो अब हम जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए सामान्यतः अभी तक हम यूरिया का उपयोग करते आए हैं, और यूरिया का हम जैसे बाजरा है उसमें 5 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा, कपास है उसके लिए अलग है, जो अपने दलहनी फसलें हैं उसमें जनरली हम नहीं देते हैं क्योंकि उनकी बर्बाद ज्यादा हो जाएगी, तो वो अलग अलग मात्रा फसलों के अनुसार से देते हैं
1: जी।
0: लेकिन हमारी अगर जो मिट्टी है राजस्थान की वो देखें तो वो क्या है, अपनी मिट्टी जो है क्षारीय है, मतलब पीएच मान 8.5 से ज्यादा है
1: जी,
0: तो अगर हम मिट्टी के माध्यम से देते भी हैं तो वो फसलों को नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उसका प्रबंधन के लिए हमें छिड़काव विधि का उपयोग करना चाहिए
1: जी।
0: कि जो हमारे जल विलेय उर्वरक है या जिसे हम कहते हैं 100% जल में घुलनशील उर्वरक, उनका हमें स्प्रे के माध्यम से छिड़काव के माध्यम से उपयोग करना चाहिए
1: जी।
0: तो जल विलय उर्वरक में देखें तो जैसे कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसके लिए हम 19-19-19 का उपयोग कर सकते हैं, 18-18-18 का उपयोग कर सकते हैं, 17-44 का कर सकते हैं, तो इनमें देखेंगे तीनों तत्व 19-19-19 में 19 नाइट्रोजन भी है, 19 फास्फोरस भी है, 19 पोटास भी, 17-44 में 17 नाइट्रोजन है और 44 आपका फास्फोरस है
1: जी।
0: तो इनको हम घोल के और इनकी मात्रा 1 लीटर पानी में 10 ग्राम लगभग रखना चाहिए, या जो ढोलकी हमारी 16 लीटर की या 15 लीटर की है तो उसमें लगभग 150 ग्राम का घोल बना के हमें छिड़काव करना चाहिए
1: जी।
0: और एक एकड़ की बात करें हम या एक हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर में कम से कम हमें 30 से 40 टंकी या 400 लीटर का पानी का स्प्रे करना चाहिए
1: जी,
0: तब हम इसकी कमी दूर हो जाएगी। लेकिन अब केवल नाइट्रोजन की कमी है तो उस तरह से हमारे पास उर्वरक इनके लिए नैनो यूरिया आ गया है, ऐसे अगर फास्फोरस की कमी हो रही है तो उसमें नैनो डीएपी आ गया है जो पहले हमारी दानेदार होती थी, और इनकी बहुत कम मात्रा में हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं।

0: जी,
1: तो इनका भी हम छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब थे बात करी जी नैनो यूरिया या डीएपी के विषय में, तो ये नैनो उर्वरक है कहीं हुए है आका विषय में भी थोड़ी किसान बयान बताओ सर।
1: जैसा कि अभी तक हमने जैविक उर्वरक बारे में सोचा था, खाद के बारे में, गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, यूरिया, डीएपी, तो ये नैनो उर्वरक जो है ये बिल्कुल नया उर्वरक है
0: जी,
1: और एक नैनो तकनीक होती है उस पर आधारित है कि जिसमें जो कण होते हैं यूरिया के, डीएपी को, वो बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं
0: जी।
1: तो इनके कणों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कम मात्रा में भी अगर हम इसको सही समय पे स्प्रे कर दें तो हमें जो यूरिया या डीएपी का उपयोग करते हैं, एक बैग यूरिया का जो उपयोग करते हैं उसका एक बोतल का ही, जो आधे लीटर की बोतल आती है हमारे नैनो यूरिया नैनो डीएपी की, उससे ही हम उतना लाभ ले सकते हैं। तो ये नैनो आधारित है, इनकी कम मात्रा उपयोग में आती है और फसलों पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है
0: जी।
1: जैसे कि जल विलय उर्वरक या जो यूरिया का हम घोल बना के स्प्रे करते हैं उससे हमारी फसलों की जलने की संभावना होती है। अगर खेत में नमी नहीं है तो उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन नैनो उर्वरकों के साथ ये कोई समस्या नहीं है। दूसरा, नैनो उर्वरकों का जब स्प्रे करते हैं तो ये फसल को लंबे समय तक पोषण करते हैं, मतलब कि फसल को ज्यादा लंबे समय तक उसको हरापन देते हैं, ज्यादा दिनों तक उसको फिर उर्वरक देने की समस्या नहीं आती है
0: जी। तो नैनो उर्वरक को कोई किसान भाई उपयोग करे तो वो कई भी देशों करे।
1: देखिए, अभी तक अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो इसका उपयोग केवल घोल बना के स्प्रे के माध्यम से ही कर सकते, और पहला स्प्रे जब फसल हमारी जमीन को अच्छी तरह से ढक ले
0: जी,
1: जनरली वो 35 से 40 दिन पे हो जाता है, लेकिन कुछ फसलें जल्दी बढ़ जाती हैं, जैसे हम मूंग की बात करें, मूंगफली की बात करें, कपास की जिसकी चौड़ी पत्तियां होती हैं वो जल्दी जमीन ढक लेती है, तो इसका हम 30 दिन पे स्प्रे कर सकते हैं
0: जी।
1: बाजरा है या फिर आपका अभी गेहूं आज फसल आने वाली है या धान जैसे जिन क्षेत्रों में है जिनकी सक्रिय पत्तियां हैं वो लगभग 35 से 40 दिन पे जमीन को ढकती हैं
0: जी,
1: तो उसको लिए हमें 40 दिनों पे स्प्रे करना चाहिए। और एक लीटर पानी में 2 से 4 ml की मात्रा हमें नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का लेना चाहिए
0: जी।
1: या जो 15 लीटर की टंकी है उसमें हमारा जो इसमें बोतल में ढक्कन लगा है उससे 2 से 3 ढक्कन की मात्रा हम डाल सकते हैं। तो इसको हम स्प्रे के ही माध्यम से करें और 35 से 40 दिन के बाद करें, ये दो मुख्य बातें हैं।
0: और नैनो यूरिया या डीएपी को उपयोग करते टाइम में किसान भाई कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान रखें?
1: जी जी, एक तो है कि कब स्प्रे करना चाहिए, तो इसको हम सुबह शाम कभी भी स्प्रे कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि तेज धूप ना हो, ओस ना पड़ी हो, पत्ती पे सूख गया हो, बारिश होने की संभावना ना हो और तेज हवा ना चल रहा हो
0: जी।
1: एक दूसरा है कि जो हम खरपतवार के लिए नोजल का उपयोग करते हैं उसी नोजल से फ्लैट फैन या कट नोजल का उपयोग करना चाहिए
0: जी।
1: तीसरी बात यह है कि इसको हम अन्य दवाइयों के साथ भी मिला के उपयोग कर सकते हैं। कोई अगर हम खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहे हैं या कीटनाशी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ भी मिला के
0: जी
1: भी, या इन दोनों को, नैनो यूरिया या नैनो डीएपी को भी मिला के हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे किसानों का अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और खर्चा भी उनका कम लगेगा। तो ये कुछ जानकारी है जिसकी उनको सावधानी रखनी चाहिए।
0: तो ये तो बात हुई सर सावधानी की, और कोई बात जिसकी छोटकी है आप किसान भाई बतानी चाहो?
1: जी जी, ये है कि जैसे जो ये नए हमारे उर्वरक आए हैं या अभी तक हम मिट्टी को पोषण देते थे, मिट्टी से फसलें लेती थी
0: जी,
1: लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हम, क्योंकि भोजन तो सीधे पौधों को चाहिए तो हमें पौधों को भी पोषण देना चाहिए, इसलिए छिड़काव के माध्यम से ये जो नए उर्वरक आए हैं, क्योंकि ये सस्ते भी हैं, जैसे डीपी हमारा 1300-1350 रुपए का एक कट्टा है, नैनो डीपी 600 रुपए की एक बोतल है, तो ये सस्ता भी है और इनका उपयोग भी आसान है, तो हमें इन नैनो उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है और ज्यादा उत्पादन भी मिलता है।
0: नैनो यूरिया या डीएपी है उनको उपयोग किसान भाई स्प्रे के माध्यम से भी कर सके है या अन काम ले पाओ कोई और भी तरीको है सर?
1: जी जी, जैसे कि नैनो यूरिया का तो मैंने बताया था कि केवल स्प्रे के माध्यम से होगा, लेकिन ये नैनो डीएपी है इसका उपयोग हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे जिन फसलों का हम बिजाई करते हैं बीज के माध्यम से करते हैं तो उसका बीज उपचार भी कर सकते हैं, जिनका हम कंद या गांठ लगाते हैं जैसे कि प्याज है या लहसुन में हम उसका

0: लहसुन लगाते हैं या जैसे बैगन है या टमाटर है सब्जियां हैं उसके पौध लगाते हैं तो हम पौध का भी उपचार कर सकते हैं, कंद का भी उपचार कर सकते हैं, या आलू है आलू को सीधे हम उसका उपचार करके भी बिजाई कर सकते हैं। तो उसमें उन खेतों में हमें जो डीएपी डालना है उसकी मात्रा हम आधा कर सकते हैं। तो जैसे बीज उपचार मैंने बोला तो बीज उपचार के लिए अलग अलग फसलों की अलग अलग मात्रा हमें लेनी चाहिए कि जैसे जैसे बीज का आकार बड़ा होगा उसमें मात्रा कम होती जाएगी। तो बीज उपचार ऐसे कर सकते हैं। अब जब प्याज लोग लगाते हैं तो प्याज के लिए हमें क्या करना है कि 10 लीटर पानी ले लें और उसमें 10 लीटर में लगभग हम एक ढक्कन या दो ढक्कन नैनो डीएपी मिला दें, 50 ml नैनो डीएपी मिला दिए और उसमें प्याज को डिप किया और डिप करके निकाल के उसको सुखा दें, उसके बाद लगाएं तो उसका उपचार हो जाएगा। इसी तरह से पौध है, हमारी सब्जी का पौध है या फिर जो भी फसल पौध के माध्यम से लगाते हैं तो उसमें भी इसे 10 लीटर पानी ले लें, उसमें दो ढक्कन नैनो डीएपी या 50 ml मिला लें और उन पौधों को 15 से 20 मिनट तक हम उसमें उनके जड़ों को डुबो के रख दें और उसके बाद उसको हम रोपित कर दें खेत में तो उनका उपचार होके लग जाएगा।
1: जी,
0: जहां हम नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का उपयोग करते हैं
1: जी,
0: तो हम उन खेतों में हम जितना भी यूरिया डाल रहे हैं या यूरिया डीएपी डाल रहे हैं उनकी आधी मात्रा कर देनी चाहिए तो हमें उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा और ये जो रासायनिक खाद है उनकी मात्रा भी हम कम कर सकेंगे।
1: जी, डॉक्टर एपी सिंह वरिष्ठ प्रबंधक इपको जयपुर आप स्टूडियो में आया और किसान भाइयों ने खरीफ की खड़ी फसलों में उर्वरक प्रबंधन ई विषय पर बहुत ही महत्व जानकारी दी, इसके लिए आपको मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद थानवी घणो प्रभु भाई। और देखो नपत भाई, अब जो आप अगली फसल आपने किसान भाई लेला वह खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल में उर्वरक प्रबंधन आप काय तरीका से कर सका था, बहुत ही बढ़िया एपी सिंह जी जानकारी दिया और आपने जानकारी दिलवाया प्रभु भाई। लेकिन आ जानकारी सुखी सुखी कोने सुना प्यारो सो गीत,
3: बिल्कुल सुनाओ सा।

0: अलाजलाई बाई का ये गीत चलो चलो नगीरा रे देश के साथ ही खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतुई एक ही साथी अश्विनी कुमार सेन
1: और नरपत सिंह ने
0: दो इजाजत और करा
1: राम राम सा।

सभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। शाम के 8 बज रहे हैं, आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे और संतोष आनंद के लिखे इस गीत को आपने सुना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत।

फिल्म पड़ोसन से अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया किशोर कुमार ने, संगीत दिया आरडी बर्मन ने और लिखा राजेंद्र कृष्णन ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं फिल्म शोला और शबनम के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोला और शबनम से ये गीत, जिसे गाया शब्बीर कुमार ने और कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत लिखा अनजान ने और संगीतबद्ध किया बप्पी लाहिरी ने। आइए आगे सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम से ये सदाबहार गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत मुकेश की आवाज में। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म डॉन से ये गीत।
1: भंग का रंग जमा हो चकाचक

पर यही सा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म होई जा।

0: मैं कैसा भोला भाला।
1: श्रोताओं, फिल्म डॉन के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, उसके बाद समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज एट 9, उसके बाद उर्दू में समाचार, और फिर 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये सभी कार्यक्रम और समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्ट्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल की टीमों की सूची तय। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मोरक्को होंगे आमने सामने। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 क्रिकेट मुकाबला कल ब्रिस्टल में खेला जाएगा। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया और सातवां अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट कल से गोवा में खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विंबलडन से, जहां पुरुष क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्ट्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस को 6-3 7-5 से और मार्ता कोस्ट्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को 6-3 6-2 से हराया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्ज का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लोविया कोबली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। वहीं प्रतियोगिता में यानिक सिन्नर, नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक रिपोर्ट।
1: नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में 5 घंटे और 15 मिनट तक चले अब तक के सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल का

टिकट हासिल कर लिया है। वो विंबलडन में लगातार 8वीं और अपने करियर में 55वीं बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फेलिक्स ऑगर अलियासिमी को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने ऑगर अलियासिमी के बैकहैंड को लगातार निशाना बनाया और अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़े। हालांकि कनाडा के खिलाड़ी अलियासिमी ने उन्हें कड़ी चुनौती दी और मैच को 5वें सेट के टाई ब्रेकर तक पहुंचाया। आखिर में जोकोविच अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैच अपने नाम करने में सफल रहे। इस जीत के साथ जोकोविच ने विंबलडन में शीर्ष 10 खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार 3 हार का सिलसिला भी खत्म किया। अब सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने जॉन लेनार्ड स्ट्रफ के खिलाफ 7-5, 7-6

0: चैंपियन यानिक सिनर ने जॉन लेनार्ड स्ट्रफ के खिलाफ 7-5, 7-6, 6-3 से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पहला सेट हारने और दूसरे सेट की शुरुआत में ही एक ब्रेक से पिछड़ने के बाद स्ट्रफ ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई। स्ट्रफ ने पूरे सेट के दौरान दबाव बनाए रखा और 5-4, 30-40 पर सेट प्वाइंट हासिल किया। इसके बाद टॉप सीड खिलाड़ी ने अपनी शानदार सर्विस के साथ साथ बेस लाइन पर लगातार अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने दूसरे सेट के टाई ब्रेक में जबरदस्त खेल दिखाया और फिर 2 घंटे 35 मिनट तक चले इस मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए जीत दर्ज की। उधर महिला सिंगल्स में कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अमरीकी स्टार खिलाड़ी ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए जेसिका पेगोला को 4-6, 6-3, 6-3 से मात देकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पेगोला लगातार अच्छा खेल रही थी और पहले सेट में ग्रास कोर्ट पर कोको गॉफ की कमजोरियां सामने आ गई, लेकिन नंबर 7 सीड खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। 1 घंटे 48 मिनट तक चले इस मैच में जीत के साथ 2 बार की मेजर चैंपियन गॉफ अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या उससे आगे पहुंचने वाली 7वीं सक्रिय खिलाड़ी बन गई। उनसे पहले वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, कैरोलिना प्लिस्कोवा, आर्याना सावालिंका और ईगा स्वाइटेक भी ऐसा कर चुकी हैं। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब रुख कर लेते हैं सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के लिए टीमों की सूची तय हो चुकी है। फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला 10 जुलाई को देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को के बीच होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं राउंड ऑफ 16 के रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
2: अटलांटा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने 0-2 से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए मिस्र को हराया। मिस्र के लिए यासर इब्राहिम ने 15वें मिनट और मुस्तफा जिको ने 62वें मिनट में गोल किए, जिससे मौजूदा चैंपियन के टूर्नामेंट से जल्द बाहर होने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद लियोनेल मेसी ने अपना जादू दिखाया और 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो के गोल में मदद की। और इसके बाद खुद 83वें मिनट में एक शानदार गोल किया। लुटारो और अर्जेंटीना के कप्तान के बेहतरीन तालमेल ने अर्जेंटीना के मुकाबले में 2-2 से बराबरी पर ला दिया। और इसके बाद एंड्रो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम के 3rd मिनट में एक शानदार गोल करके अर्जेंटीना की जीत को सुनिश्चित करते हुए स्कोर 3-2 कर दिया। वहीं एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। 1954 के बाद पहली बार स्विट्जरलैंड ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। रूबेन वर्गास ने विजय किक मारकर स्विट्जरलैंड को 7 दशकों में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। वैंकूवर में खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमें निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय में भी कोई गोल नहीं कर सकी। मैच के दौरान दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी ने गोल में तब्दील नहीं कर पाया। इसके बाद मुकाबले का फैसला हुआ पेनल्टी शूटआउट से। स्विट्जरलैंड के लिए रूबेन वर्गास ने सबसे अहम पेनल्टी को गोल में तब्दील कर अपनी टीम की जीत पक्की की। मुकाबले के पहले हाफ में कोलंबिया ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा, लेकिन टीम गोल का कोई मौका नहीं बना सकी। कोलंबिया की सबसे अच्छी कोशिश गुस्तावो पुएर्ता ने की, जिनके शानदार शॉट को स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से रोक दिया। दूसरे हाफ में लुइस सुआरेज को भी मौका मिला, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के फैबियन रीडर की वॉली को कोलंबिया के गोलकीपर कैमिलो वर्गास ने आसानी से बचा लिया। अतिरिक्त समय में मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर रहा। कोलंबिया के जॉन लुकुमी का हेडर क्रॉस बार से टकरा गया जबकि स्विट्जरलैंड के जैकियम डोनी का शॉट ने गोलकीपर ने रोक लिया।

0: पेनल्टी शूटआउट में ग्रेगर कोबेल ने एक अहम बचाव किया और रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड को ऐतिहासिक जीत दिला दी।
1: इट्स ऑल ओवर स्विट्जरलैंड आर गोइंग टू द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप एंड दे गॉट अ डेट विद लियोनेल मेसी।
0: स्कैन के लिए निशर्म।

0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। और अब बात करते हैं क्रिकेट पर। नॉटिंगहम में तीसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया। इंग्लैंड के 202 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 12वें ओवर में सिर्फ 76 रन पर ही सिमट गई। जोफ्रा आर्चर को धारदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: टॉस जीतकर भारत ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिन सॉल्ट ने इंग्लैंड के लिए 44 गेंद में 70 रन की दमदार पारी खेली। वहीं जॉश बटलर ने भी 36 रन का अहम योगदान दिया। सैम करन ने अंतिम ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नबाद 41 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। अभिषेक शर्मा महज 10 रन बनाकर जॉश टंग का शिकार बने। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। सूर्यवंशी 5 गेंद में 13 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। ईशान किशन भी 13 रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर के पेविलियन लौटने के बाद भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अक्षर पटेल 10 और तिलक वर्मा 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय पारी को 11 ओवर 4 गेंद में ही समेट कर श्रृंखला में बढ़त बना ली। जोश टंग ने 4, जोफ्रा आर्चर ने 3 और आदिल रशीद ने 2 विकेट झटके। बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते भारत को टी20 इंटरनेशनल में रन के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि पावर प्ले में 4 विकेट गंवाना हमें मुकाबले में महंगा पड़ा।
2: आई फील दैट वी नीड टू एक्सेप्ट दिस लॉस एंड कंप्लीटली गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड सी व्हाट वी डिड रॉन्ग। लुकिंग एट द विकेट आई डोंट थिंक दैट इट वाज अ 200 विकेट। द वे वी बैटेड वी लॉस्ट 4 विकेट्स इन द पावर प्ले। आई थिंक वी लॉस्ट ओवर देयर। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक स्ट्रांग। नॉट वेल टू मच अबाउट व्हाट्स हैपेंड इन द पास्ट। एवरी इंडिविजुअल हैव टू थिंक बाय हिमसेल्फ एंड सी हाउ दे कैन विन द मैचेस एंड टेक दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी।
1: इससे पहले भारतीय टीम को वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन से हार झेलनी पड़ी थी। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हुई। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम सबसे कम 74 रन ही बना सकी थी। अब भारत ब्रिस्टल में कल खेले जाने वाले मुकाबले को जीतकर श्रृंखला में जीत का खाता खोलना चाहेगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर आईसीसी ने टी20 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन पहले और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। टी20 गेंदबाजों में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले और भारत के वरुण चक्रवर्ती 5वें स्थान पर हैं। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस पर। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन यूटीटी के 7वें संस्करण का आयोजन कल से 26 जुलाई तक गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस लीग में 7 फ्रेंचाइजी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। घरेलू टीम डेम्पो गोवा चैलेंजर्स का लक्ष्य रिकॉर्ड तीसरी बार यूटीटी खिताब जीतना होगा। ये लीग सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेली जाएगी, जिसमें प्रत्येक टीम लीग चरण के दौरान दूसरी टीम से एक बार भिड़ेगी। टूर्नामेंट से पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने कहा कि ये प्रतियोगिता आगामी एशियन गेम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
3: It's a very good place. I want to play my best in this league and I want to set the momentum for the Asian Games which is going to happen this September. So yes, it will be a very good challenge for me to play here and be ready for the Asian Games which is going to be in this year and hopefully I will be ready for the Asian Games.
0: टेबल टेनिस खिलाड़ी दिया चिताली ने कहा कि इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
4: Every season I think I learn a lot.

0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जारी एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के अंडर 19 50 किलोग्राम कैटेगरी में अंबेडकर मितई ने पुरुषों के वर्ग में दमदार जीत हासिल की। और जन्मदिन की श्रृंखला में आज बात भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की। दादा के नाम से प्रसिद्ध सौरव गांगुली का आज 54वां जन्मदिन है। प्रिंस ऑफ कोलकाता ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन बनाए।
1: लाउड अप्लॉज फॉर इंडिया कैप्टन लॉन्गिंग आउट इन सेंटर द लास्ट टाइम इज कमिंग आउट टू बैट इन टेस्ट मैच क्रिकेट फॉर अ क्रिकेटर ही हैज बीन सौरव गांगुली फुली डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज।
0: सौरभ गांगुली ने 311 एक दिवसीय मैच में 11,363 रन बनाए। उनकी कप्तानी में भारत ने 49 टेस्ट में 21 और 146 एक दिवसीय मैचों में 76 जीत दर्ज की। सौरभ गांगुली मानते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मैदान पर होना सबसे सुखद क्षण है।
2: क्रिकेट एक दिन छूट जाना है और 15 साल भारत के लिए खेले वो वापस नहीं आएगा तो सेटिस्फेक्शन अलग ही है। जब तुम एक तेज गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना, बॉल बीच में लगता है तो कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी आप काम कर लो, जितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी पैसे कमा लो, वो वापस नहीं आएगा।
0: आपसे विदा लेने का कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कुस्त्रुक और चेक गणराज्य की लिंडा मोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य अंगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिंफनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी

0: बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वर्णा नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वार्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वीं संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोसुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्तुको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के

0: बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयुमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्टिक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम
2: कार्यक्रम आपके लिए। आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर फिल्म का नाम अनुरोध।

श्रोताओं, कल कार्यक्रम आज के फनकार सुबह 9:30 पर केंद्रित रहेगा फिल्मकार गुरुदत्त पर, और रात 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेता संजीव कुमार पर। आप जरूर सुनिएगा आज 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित है, क्योंकि आज है अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत बैराग फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। छोड़

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आपको सुनवा रहे हैं अब आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है एसडी बर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने ये गीत फिल्म चुपके चुपके से।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों की प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चरस से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: मुकेश की आवाज में सुनिए उपासना फिल्म का ये गीत, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर।

अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश चितचोर इस फिल्म का गीत येसुदास और हेमलता की आवाजों में। इस गीत के गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए अब यही संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार, आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे तो ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।

कलियां फिल्म में नीतू सिंह ने डबल रोल किया था और तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अपने अभिनय की ये पारी शुरू की। उस समय पहली फिल्म जो थी वो थी सूरज 1966 में।

जीतू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए, जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ, 10 लाख, 2 कलियां, वारिस और पवित्र पापी। इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म में उनके हिस्से आया एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया नीतू।

इस गीत के बाद दर्शकों के बीच एक अलग इमेज बनी नीतू सिंह की, और फिर नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे,

राजेश खन्ना के साथ महाचोर चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन,

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 21 साल की थी तब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ विवाह कर लिया।

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का,

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना।

0: अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे शोध स्वर और आलेख अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो

0: सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
1: संगीतकार ओपी नैयर।
0: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है ज्यादा।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंडिक 1.3 MHz पर रात्रि के 10 बजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म संगीत का, फिल्म दिल चाहता है से। आवाज है सोनू निगम की और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

सुनाता है ये गीत महबूब का लिखा इस्माइल दरबार के संगीत में, आवाज है केके की और फिल्म है हम दिल दे चुके सनम।

यही तो भी आपने फिल्म ताल से सुख की सी और अलका याग्निक की आवाज में सुना। आइए एक बार फिर से सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में अगला गीत। जावेद अख्तर के बोले आदर्श श्रीवास्तव का संगीत और फिल्म का नाम है चलते चलते।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: सुनवाते हैं अंतिम गीत फिल्म संगीत का, फिल्म दिल है तुम्हारा से मिली जुली आवाज है सोनू निगम और कविता जी की। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

सोनू निगम और कविता अजय के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रूपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप

0: भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM इंडेक्स 1.3 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।